0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
3: पेट्रोलियम लेवी के खात्मे ताईं जमात इस्लामी जो इजाज़ जारी रहंदो मौजूदा हुकूमत के सुबाह ट्रोन या इंतजाम यूनिट्स में विराइण जो को भी अख़्तियार ना है अड़ियों तजवीज़ों फेडरेशन कौमी वहदत ऐं वफ़ाक़ी ढांचे लाइ नुक़सानकार आहिनि सूबनि खे रेफ्रीडम या कंहिं ॿी सूरत में आइनी हक़ खां महरूम नथो करे सघिजे कुदरती वसीलनि बाबति फ़ैसिलनि में लाॻापियल सूबनि ऐं मक़ामी आबादी खे एतमाद में वरितो वञे तारीख़ तहफ़ुज़ आहिनि पाकिस्तान जे इजलास में सिंध जे मौजूदा जाग्राफ़ी ऐं इंतज़ामी हैसियत बरक़रार रखण ते ज़ोर सियासी मुआशी बुहरान जे ख़ात्मे लाइ ए पी सी ॻोठाइण जो फ़ैसिलो अॻवाणे चयो 27 सेप्टेम्बर जो लांग मार्च पुरामुन आइनी जमहूरी हूंदो महांगाई बेरोज़गारी तेल जाग ऐं अमन अमान इतिजाज़ बुनियादी एजेंडा में शामिल आहे

0: पर सॼे मुल्क मां हिकु ई वक़्तु शुरू थींदो। सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान ऐं केपी मां आवाम जो समुंड इस्लामाबाद पहुचंदो। आवाम खे ख़ैरात न पर बुनियादी हक़ घुर्जे लांग मार्च रोकण जो वाहिद रस्तो पेट्रोलियम लेवी जो ख़ात्मो आहे। जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम उरहमान जो मर्दान में जलसे जे ख़िताब। हाफिज़ नईम उरहमान चयो त कंटेनर रखण सां कुझु न थींदो। चालमी क़ीमतूं रुगो पाकिस्तान लाइ वधनि पियूं जो आवाम ते पेट्रोल बम किरायो पियो वञे। जंग बावजूदि भारत में पेट्रोल जी क़ीमत 35 रुपियनि खां मथे न वधी। हिते मिज़ाइलनि खां परियां ई महांगाई जा मिज़ाइल फायर कया विया। वफ़ाक़ी सरकार लांग मार्च खे नज़र आॾो रखंदे इस्लामाबाद में रेड ज़ोन सील करण जो फ़ैसिलो करे वरितो। रेड ज़ोन ॾांहुं वेंदड़ सभई 5 रस्ता मुकमल तौरु बंदि कया वेंदा। ज़रनि मूजिबि रस्तनि ते कंटेनर जूं 2-2 कतारूं लॻाए वॾे नफ़री मुक़ररी कई वेंदी। एक्सीडेंट रेड ज़ोन खे सील करे रुॻो हंगामी हालतुनि में खोलियो वेंदो। सिंध असेंबली मका मुकरमा ते ड्रोन हमले ख़िलाफ़ मज़मती ठहराउ इक़रार मंज़ूरु करे वरितो। सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी जो तरमीमी बिल बि मंज़ूरु। पीटीआई जे हामी मेंबर सजाद अली पारां बिजली जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ ठहराउ पेश। साबिर क़ाइम ख़ाने ध्यानु छिकायो नोटिस ते ॻाल्हाईंदे चयो त हैदराबाद जे इलाइक़े लतीफ़ाबाद में पीअण जे पाणी जो शदीद बुरान आहे। सिंधु दरिया जे कप ते हुजण बावजूदि रहवासी बि गदलो पाणी वापराइण ते मजबूर आहिनि।
1: मसले से 547 वाली हम इसको नहीं मानते। ये हमने आज एक मुनफरिद एहतजाज किया है कि हम असेंबली में इसी तरीके से रहेंगे। पीपल्स पार्टी वालों की कांपे टांग गई है, ये हमें अंदर नहीं छोड़े। हम अफोर्ड नहीं कर सकते पेट्रोल, आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती है। ना मंजूर।
0: तेलगन में वाद ऐं सिंध में करप्शन ख़िलाफ़ पीटीआई जा असेंबली मेंबर तौरु गॾु गाॾनि ते चढ़ी पहुता। करप्शन कंदड़ ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो त पीटीआई वारा पंहिंजनि इलाइक़नि मां लैंड क्रोस ऐं ॿियनि लग्ज़री गाॾियुनि ते चढ़ी आया। सिंध असेंबली वेझो रुगो फोटू सेशन लाइ गॾनि गाॾनि ते चढ़िया। सियासत करणु घुर्जे पर ही पॉइंट स्कोरिंग जो तरीक़ो आहे। पीटीआई वारा गाॾनि बदिरां गाॾी ख़ाली गॾनि ते बि चढ़ी पिए सघिया।
2: असांजो तारीख़ी मादरे वतन आहे। ही कहिड़ा बि फ़लसफ़ा खणी अचनि, असां उन्हनि खे क़बूल करण लाइ तयार न आहियूं। ऐं सिंध कंहिं बि सूरत में न सूबा ठहंदा सिंध में, न सिंध तक़सीम थींदी। सिंध क़यामत ताईं सिंध जी हैसियत में शादाबाद रहंदी।

पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: कोक स्टूडियो सीजन 14।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: कोक स्टूडियो सीजन 14।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: जिनके प्रिजर्व कयो वञे जिनकी हिफाजत कई वञे जिनके ओरिजिनल उन ही सूरत में यानी आम कारीगरन का न पर जैसे हेरिटेज तौर उड़ा पो असरा डिस्ट्रिक्ट जे ऑफिसर उन तरफा जैसे कोशिशों वरती व्यूं उनके सकाफती विरसो जैसे डिक्लेयर किया वे तो जाहिर है इनते प्रॉपर तरीके से इन इमारतों कम थोड़ा भी खपे
4: जी ऐसो इन वक्त असो हेरिटेज कमेटी आज एडवाइजरी रोल आ सिर्फ तो गवर्नमेंट के एडवाइज कर बुधाए तो ये शून असो तारीखी लास्ट टाइम जडे आयो हुयस तो असके बई टावर्स सुकानो टावर ए अतातुर्क टावर इन लिखो हो गवर्नमेंट के इन हेरिटेज डिक्लेयर किया प्रॉपर मेंटेनेंस कई वे गडो गड अस कलेक्टोरेट बिल्डिंग्स जो भी लिखो हो हाँ गवर्नमेंट जो कम है तो उन्होंने एडवाइस से उन मशवर से जो असो रोल आ कर चुका अग में उन्होंने अमल कर ओनरशिप करो मेंटेन कर शहर के लिए सूबे के लिए तारीखी जो शूं इमारतों मॉन्यूमेंट्स या पार्क मेंटेन थी वा पार्क के हिसाब से असो बिलावल साहब आजो उन में काफ़ी कंसर्न भी आए इन बजट में हिदायत भी क्यों अथन असके जे भी असा पार्क उन्होंने मेंटेन करो वरी रेनोवेट करो स्टाइल
5: ये हकीकत है तो लालकान एक तारीख है पर लालकान जो जी तारीखी इमारतू आन जी असासो आन लालकानी सुणपल उन इमारत की नरगो संभाल दी वे पर उन मरम्मत कराए सागे शेप में आंदो वे तो जी इंद नसल के भी जान हासिल थे तो सिंध जहा मू हुकुमरान पी तारीखी शभाल रखन था कैमरामैन अल्ताफ खुआर से गुड हनीफ सुहाग KTN न्यूज लालकान
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
6: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: रही हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: Coke Studio, Season 14.

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: और उसी का इंतजार कर रही हूँ।
1: थैंक गॉड शी इज हियर। सिस्टर मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। ओके जान आई एम ऑफ नाउ एंड आई विल सेंड यू सम फूड। सिस्टर इनका ख्याल रखिएगा। हाँ आई एम जस्ट कमिंग।
2: आपकी ड्रिप चेंज होने वाली है, मेडिसिन लिया आपने?
3: जी कल रात से बड़ी बेचैनी हो रही है। आई कांट सीम टू स्लीप। मुझे लगता है दवाइयों का साइड इफेक्ट है।
2: कभी कभी बिला वजह बेचैनी हो जाती है।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 11 AM. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी
4: दिल्ली के टुकड़ों से
5: जवाब दे
6: हुसैन जो हमलन जो खतरो सऊदी अरब अलर्ट जारी करे छड़ियो सऊदी सिविल डिफेंस हुसैन जे इम्कानी हमलन के दिसंदे सऊदी जे राजधानी रियाज अल खारिज में अलर्ट जारी करे छड़ियो
5: ट्रंप सीएनएन समेत टिन वरन इदारन जे नुमाइंदन जे व्हाइट हाउस में दाखला ते पाबंदी लगाए छड़ी अमेरिकी सदर जो आहे ते इदारा उहे इदारा मुझे इंतजामिया खिलाफ कूड़ियो खबरू पया पखेड़न वधी के मीडिया इदारन ते भी पाबंदी लगी सके थी
6: खेरपुर में सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ वकीलन पारां अदालती कार्रवाई जो बाइकाट एहतजाज भी कयो वियो डिस्ट्रिक्ट बार खेरपुर जे वकीलन जो चवण आहे त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी
5: मेहड़ में शहरनि जो बुनियादी सहूलियतनि जी खोट ख़िलाफ़ प्यादल मार्च करे एहतजाजी मुज़ाहिरो अॻवाड़नि चयो आहे त बिलावल कॉलोनी हमदम कॉलोनी ऐं एजाज कॉलोनी में बुनियादी सहूलियतनि जी खोट आहे न घिटियूं ठहियूं आहिनि न ई पीअण जो पाणी आहे सफ़ाई बि नथी कराई वञे मसला हल कया वञनि
6: कंदकोट में ज़रई ज़मीन मां हिसो न ॾियण तां पीउ खे क़तल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार पुलिस जो चवणु आहे त जवाबदार ॾोह जो एतिराफ़ करे वरितो आहे वधीक जांच कई पई वञे

0: बख्शापुर में इंडस हाईवे ते वेन जो टक्कर लगण सबब अठन वरन जो नींगर फोत काठी पुल वट वेन जो टक्कर लगण सबब मोहम्मद मुराद पुटो गाणो हयाती विञाए वेठो पुलिस वेन ड्राइवर के गिरफ्तार करे वरतो नींगर जो मड़ अस्पताल मंतकिल शाशरो में बरसात दौरान विज किरण सबब गरीब धनार जो 14 बकरी मरी वयूं गोड कीता बजीर में विज किरण सबब मुबारक बजीर जो 14 बकरी मरी वयूं गरीब धनार पारा इंतजामिया वसवारन खां माली सहायता की अपील।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ते जबरदस्त हवा रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का
2: थम थम थम किताबें लेके निकले हम अमीन कहाना रुकना तुम रोज रोज आ

0: बनाएंगे,
1: औरों के काम आएंगे हम।
2: पाकिस्तान में 48% लड़कियां तालीम के हक से महरूम हैं।
3: इस यौमे आज़ादी अहद करते हैं लड़कियों की 100% तालीम का, क्योंकि जब लड़कियां पढ़ती हैं तभी कौमें आगे बढ़ती हैं। बेटी पढ़ाओ, मजबूत बनाओ।

वक्त हालतूं ऐं वाकिया मुसलसल तब्दील थींदा रहनि था। मुस्तकिल हुजे थी सिर्फ़ तब्दीली। हर पल तब्दील थींदड़ वाकियनि जा नवां पहलू वसी ऐं गहरो नुक़्ता नज़र सिर्फ़ इनसाइड विद नाज़िरा मीर सां।

पाकिस्तानी सियासत जो बेड़ो वफाक जो साहिल कौमी धारा मुल्की मईशत जो घुमंदर फिरंदर थी थो सूबाई असेंबलियन का आला ऐवान तीन पावर कॉरिडोर में फैसला थी रहा है असांजी जरात सनत असांजी अफरादी कुवत असां ठाइंदासीं मजबूत पाकिस्तान इक्तसादी बहरानन की आड़ में जन्म वठी रहा आहिन वाशी तरक्की जा ख्वाब सियासतदानन की चाल छा है ब्यूरोक्रेसी जो हाल छा है छा आलमी मंजरनामो तब्दील थी रहा है जदे खबरू सुर्खियों बढ़ जी वेंदियूं आहिन।

बजे रहा है GFM नेटवर्क। प्रोग्राम आहे म्यूजिक मस्ती। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती सान करे मा तवांजो बांजो मेज़बान गुलाब खान बहन। मुखातिब थींदे पुछंदुसि त कहिड़ा हाल अथव त सही आहे अवां जी उमेद मूंखे इहा आहे त अल्ला ताला तव्हां सभिनी ॾे बिल्कुलु ख़ैर ख़ैरियत कई हूंदी असांजी दुआऊं बि तव्हां सां गॾु गॾु हूंदियूं आहिनि हमेशह वांगुरु दुआ असांजी इहा हूंदी आहे त अल्ला ताला तव्हांखे सदाईं ख़ुशि रखे आबाद हुजो कॾहिं बि ॾुखियो ॾिसो समूरियूं परेशानियूं तव्हांजी दूरि थी वञनि तकलीफ़ूं तव्हांजी दूरि थी वञनि ऐं तव्हांजी ज़िंदगी बाग बहार थी वञे। आमीन।

मुंहिंजा मिठा साईं जी एफ एम नेटवर्क जे समूरनि स्टेशननि तां जंहिंमें सखर लाड़काणो मीरपुर ख़ासि मोरो सकरंड ऐं मटियारी मातली ऐं मिरापुर इन्हनि सभिनी स्टेशननि तां हीउ जेको प्रोग्राम आहे इहो हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑन एयर कयो वेंदो आहे जंहिंमें असां सां गॾु जंहिंमें हूंदियूं आहिनि मिठियूं मिठियूं ॻाल्हियूं अवां पारां मोकिलियल प्यार भरिया मैसेजिस ऐं तव्हांजे पसंदि जी चूंड मौसीकी त मुंहिंजा मिठा साईं तव्हां असांजे हिन शो में शामिलु थी सघो था बज़रिए SMS करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे आसान आहे पंहिंजो मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो ऐं उते वञी लिखो MRO खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो ऐं लिखी करे मोकिलियो असां नहां 888-1 ते जी उस्ताद बुखारी जी शेर तव्हांखे मां प्रोग्राम जे आगाज़ में ॿुधायो त गमनि जी दुनिया में ख़ुशियूं पिया ॻोल्हियूं मौत जे मुंह में ज़िंदगी पिया ॻोल्हियूं त ज़िंदगीअ जो नालो ई ख़ुशी ऐं गम जो मेलाप अथव मुंहिंजा साईं कॾहिं इंसान जे राहुनि में गुल विछाइजी वञनि था त वरी कॾहिं कंडनि सां वासो पवे थो पर असल कामयाबी उहा आहे त इंसान ॾुखनि तकलीफ़ुनि ऐं नाहुनि में जे बावजूदु ख़ुशियुनि जी तलाश जारी रखे उस्ताद बुखारी जी शायरीअ में बि ज़िंदगीअ जी उन्हनि ई हक़ीक़तुनि उमेदुनि ऐं इंसानी जज़्बनि जी ख़ुशबू जो इज़हार मिले थो गमन जी दुनिया में ख़ुशियूं पिया ॻोल्हियूं रुगो हिकु शहर न पर ज़िंदगी जो हिकु उहो वॾो फ़लसफ़ो आहे दुनिया में हर माण्हूअ वटि पंहिंजा ॾुख पंहिंजा मसला ऐं पंहिंजूं महरूमियूं आहिनि पर उन हूंदे बि इंसान जी दिलि ख़ुशीअ जी तलाश में रहे थी को मोहबत में ख़ुशी ॻोल्हे थो त को दोस्तीअ में त वरी को पंहिंजे औलाद जी मुस्कुराहट में त वरी को पंहिंजे वतन ऐं धरती जी ख़िदमत में ॻोल्हे थो ग़म इंसान खे कमज़ोर करण बदिरां जेकॾहिं हौसलो ॾिए त उहो ई ग़म इंसान जे किरदार खे मज़बूत बणाए वठो ऊंदाही राति केतिरी बि ॾिघी हुजे मुंहिंजा मिठा साईं सुबुह जो अचणु यकीनी हूंदो आहे अहिड़ी तरह ज़िंदगीअ जा ॾुख ऐं हमेशह ज़िंदगी जा जेके ॾुख आहिनि उहे हमेशह क़ाइमु नथा रही सघनि उमेद जो हिकु नंढड़ो ॾींहो बि न इंसान खे वॾी ऊंदाहीअ मां कढी सघे थो उस्ताद बुखारी जी शायरी जो हुस्न उहो आहे त हू आम इंसाननि जे अहसासनि खे लफ़्ज़ ॾेई करे संदसि फ़िक्र में मोहबत दोस्ती धरती इंसानियत ऐं उमेद अहम हैसियत रखनि था ऐं हू असांखे उहो अहसासु ॾियारे थो त ज़िंदगीअ खे सिर्फ़ु शिकायतनि सां न पर मोहबत ऐं हौसले सां बि ॾिसणु घुरिजे

मुंहिंजा वेठा साईं तव्हां असांजे शो में शामिल थी सघो था बज़रिए एस एम एस। एस एम एस करण जो तरीक़ेकार सवलो आहे, आसान आहे। पंहिंजे मोबाइल फोन जे राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वञो, एम आर ओ लिखो, स्पेस ॾियो, स्पेस खां पोइ लिखो पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो, ऐं लिखी करे मोकिलियो असां 888 ते। मुंहिंजी प्ले लिस्ट में ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, मुमताज़ मौलाई जी आवाज़ में आहे, अचो त उनखे इंजॉय कयूं। ऐं उनखां पोइ जेके तव्हांजा मोकिलियल मैसेजिस आहिनि उन्हनि खे बि पढ़ंदासीं ऐं तव्हांखे प्रोग्राम में शामिलु कंदासीं।

0: It's 11:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

दिलड़िन जो चोर आहे मुझो जानी, मिठो अंगूर आहे मुझो जानी। त फरदाना परवीन जो खूबसूरत आवाज़ ऐं तव्हांजो सुंदर समाधो, त मुंहिंजे मिठा साईं तव्हां बि पंहिंजे पसंदि जो गीत ॿुधण लाइ असांखे मैसेज मोकिले सघो था, जंहिंमें तव्हां पंहिंजो नालो लिखंदा, पंहिंजे शहर जो नालो लिखंदा ऐं पंहिंजे पसंदि जो गीत लिखी करे असां मोकिलींदा, तव्हांखे असां उहो ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। उहो मैसेज असांजे लाइ तव्हांजो मोकिलियल मुहबत जो इज़हार हूंदो। असां सां गंढियल रहो ऐं पंहिंजे पसंदि जे गीतनि सां प्रोग्राम खे वधीक अञा ख़ूबसूरत बणाईंदा रहो ऐं मैसेज कंदा रहो ऐं पंहिंजे पसंदि जा गीत बि असां सां ॿुधंदा रहो। त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो बि वक़्तु थियण वारो आहे, त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़

आसान भेण ऐं प्रोग्राम म्यूज़िक मसीह हर छंछर जे ॾींहुं 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं ऑनियर कयो वेंदो आहे। त प्रोग्राम ई शामिल कयूं था शमन अली मीरालीअ जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे ऐं अदा फरमाइश कई हफ़ीज़ सोलंकी साहिबु मोरो खां त उन जी पसंदि जो सॉन्ग ॿुधी था वठूं।

0: आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ट्रंप CNN समेत मीडिया जे किरदारन ते व्हाइट हाउस में दाखला ते पाबंदी लगाए छड़ी। पाबंदी हेठ आलेदारन में MS नाओ ए पॉलिटिकल नाले खबरू इदारो भी शामिल। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में ट्रंप चयो आहे त टई इदारा लगातार इंतजाम खिलाफ़ पूरी ऐं ख्याली खबरू हलाए रहा आहिनि। सिंध बार काउंसिल जे सॾ ते सिंध जे इम्कानी विरांगे खिलाफ़ वकीलनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। खेरपुर ऐं रोहड़ीअ में वकीलनि अदालती कार्यवाहिनि जो बाइकाट करे मुज़ाहिरा कया। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध जो विरांगो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे, साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी। मेयड़ में शहरनि जो बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट खिलाफ़ प्यादल मार्च। बिलावल कॉलोनी, हमदम कॉलोनी, एजाज कॉलोनी में बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट खिलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन चयो त टिनी कॉलोनियुनि में न घिटियूं ठहियूं आहिनि, न ई पीअण जो पाणी आहे, सफ़ाई बि नथी कराई वञे, मसला हल कया वञनि। खानपुर में यूथ एसोसिएशन जे सॾु ते वधंदड़ बदम रैली ऐं धरणो। शहरनि ईदगाह खां उर्दू स्कूल ताईं रैली कढी धरणो हुयो। अॻवाननि चयो त पुलिस जी नाअलीअ सबबि खानपुर शहर ऐं भरपासे में बदमनी चोट चढ़ियल आहे। पुलिस जे सरपस्तीअ में मंशा जो विकिरो ज्वाज अॾा ऐं व्याज हली रहियो आहे, नोटिस वरितो वञे। बिरया सिटी भरिसां पसनि जी शादीअ तां नौजवान जे घर ते मुबैना हमिलो। फायरिंग में संदसि ज़ाल ज़ख़्मी। ॻोठ अली खान सोलंकीअ में हथियार बंदनि मुबैना तुर अलताफ़ सोलंकीअ जे घर ते का कई। जवाबदार नारी आसत सोलंकीअ खे गोली हणी ज़ख़्मी कयो। मुतासिरनि चयो त 5 हथियार बंदनि फायरिंग करे घरवारीअ खे ज़ख़्मी कयो आहे। कंदकोट में ज़रई ज़मीन मां हिसो न ॾियण तां पीउ खे क़तल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस चयो आहे त जवाबदार ॾोह जो इतराफ़ कयो आहे, वधीक जांच कई पई वञे। ऐं छाछरो में बरसाति दौरान विज किरण सबबि 14 बकरियूं मरी वियूं। ॻोठ कीता बजीर में विज किरण सबबि मुबारक बजीर जूं 14 बकरियूं सड़ी वियूं। धनार पारां इंतिज़ामिया ऐं वस वारनि खां माली सहायता जी अपील। नगर पारकर भरिसां विज किरण सबबि पोरियत जूं झोपड़ियूं बि रख थी वियूं।
0: आप सुन रहे थे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध धरती जा मतवाला असी आयूं मीरपुर खास वारा।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है अब जिम्मेदारी हम सब की है हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी
3: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing
4: Pakistan ki shaan Wadi-e Mehran Mehran ki pehchan GFM 88 network Sindh ki awaaz

असांजे लाइ बि दुआ कजो, असां अव्हां जे लाइ दुआ कंदासीं। ऐं उनखां अलावा जेको तव्हां मैसेज कंदा आहियो न, उहो मैसेज वारो नंबर बि गुम थी वियो अथव मुंहिंजा मिठा साईं मूंखां। बहरहाल महिरबानी आहे मुंहिंजा प्यारा, तव्हां असांजे शो में शामिल थिया। लख रुपए लख अहसान अदा जन मुनवर मौलाई जी कलाम जी फरमाइश कई आहे। मुनवर मौलाई जो कलाम प्रोग्राम जो वक़्तु ख़तमु थियण वारो आहे। नेक्स्ट सैटरडे ते तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाइबो, इहो तव्हां सां वाइदो हूंदो, पर शर्त इहो हूंदो त तव्हां असांखे मैसेज कंदा, छो जो मूंखां यादि बि विसरी वेंदी अथव। त असां सां गॾु आहे प्यारो भाउ, चवे थो अस्सलामु अलैकुम, अदा आप को और FM की टीम को अल्लाह पाक खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। अदा अल्लाह साईं, वालेकुम असलाम, ऐं अल्लाह साईं तव्हांखे बि ख़ुशि रखे, आबाद हुजो। असांजी दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि हमेशह हमेशह जे लाइ, सिर्फ़ु तव्हां सां न बल्कि जेके बि असांजा लिसनर्स आहिनि उन सभिनी सां असांजूं दुआऊं गॾु आहिनि। ऐं अदा गुलाब लगारी शहर आहे, उनजे भरमी आहे ॿियो ॻोठु। अच्छा, ॻोठु जेको आहे उनजो नालो आहे बिशाम ख़ान रिंद, ऐं उतां शाइर आहे गाज़ी ख़ान रिंद। अदा कहिड़ी शाइरी हिन महिल थोरी कई अथई मुंहिंजा मिठा साईं, थोरी शाइरी बि लिखी मैसेज में मोकिली थो करणु, तुंहिंजी शाइरी मां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयां। उन सां गॾु आहे रिज़वान अली रिंद, फैज़ान अली रिंद, शहज़ाद अली रिंद, ऐं नंढड़ी आहे कोनेन ज़हरा। ऐं चए थो आपका शो सुन रहा हूं, शो लाजवाब है। ऐं हमीद अंसारी जी कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा साईं हाज़ुर, तव्हांखे बि तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग असां ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, पर नेक्स्ट शो में, छो जो हींअर वक़्तु प्रोग्राम जो थी चुको आहे तक़रीबन पूरो। ऐं इन खां गॾो गॾु असांजे प्रोग्राम में शामिलु आहे जाम ख़ान बबर, अब्दुल रशीद बबर ऐं फरज़ाना परवीन जी कलाम जी मुंहिंजनि भाइरनि फरमाइश कई आहे त मुंहिंजा मिठा साईं फरज़ाना परवीन जो कलाम मूं प्रोग्राम में हिकु दफ़ो हलाए चुको आहियां। इनशाला नेक्स्ट प्रोग्राम ई तव्हांखे ज़रूरु तव्हांजे पसंदि जो सॉन्ग ॿुधाईंदुसि। त मुंहिंजा मिठा साईं, वक़्तु कंहिं लाइ बि नथो बीहेव, ऐं अॼु जे हिन ख़ूबसूरत महफ़िल जो सफ़र बि हाणे पहुतो आहे पंहिंजी पुॼाणीअ ते। अव्हांजो साथ, अव्हांजा मैसेज ऐं अव्हांजी मोहबत हिन प्रोग्राम जी असल ख़ूबसूरती आहिनि। उमेदु आहे त अॼु जा गीत, ॻाल्हियूं ऐं चंद घड़ियूं अव्हांजे दिलि खे ज़रूरु वणियूं हूंदियूं। त ॿिए प्रोग्राम ते पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त, पर हीअ इजाज़त रुॻो अॼु लाइ आहे। मोहबत जो हीउ रिश्तो ईंदड़ प्रोग्राम ताईं बि क़ाइमु रहंदो, ऐं पंहिंजे रेडियो खे ॿुधंदा रहो, ऐं पंहिंजो प्यार ऐं मैसेज रहो, जिते बि रहो पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु रखो। ईंदड़ मुलाक़ात ताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त।

खेबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट में बम धमाके में मुलविस समूरा दहशत गर्द मारजी विया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकमल करे वरतो। सिक्योरिटी जरियन मूजिब पुलिस लाइन में लिकल बिना आपघाती बमबारन के भी मारियो आए। कार्रवाई दौरान मजमू तौर से 7 दहशतगर्द मारिया व्या। कमांडर्स बम डिस्पोजल स्क्वाड इलाके के क्लियर करार दई छो। ऑपरेशन की निगरानी जनरल ऑफिसर कमांडेंट कोहाट कई।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रूस ऐं ईरान ते पाबंदियूं मरण वारे बिल्स ते सहियूं करे छॾियूं। ट्रंप पारां बिल्स ते सहन बाद ईरान ते लागू पाबंदियुनि जो मुदो वधी वियो। रूस ते नयूं पाबंदियूं लागू थी वयूं। रूस जे पाबंदियुनि हेठि आयल शोबनि में तवानाई ऐं वापार वारियूं शयूं बि शामिल।
1: ट्रंप CNN समेत मीडिया जे टिन इदारनि ते व्हाइट हाउस में दाख़िला ते पाबंदी लॻाए छॾी। पाबंदी हेठि आयल इदारनि में MS नाओ ऐं पॉलिटिकल नाले ख़बरू इदारे बि शामिल आहिनि। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में सदर ट्रंप चयो आहे त टई इदारा लॻातार इंतज़ाम ख़िलाफ़ कूड़ियूं ऐं ख़्याली ख़बरूं हलाए रहिया आहिनि।
0: सिंध बार काउंसिल जे सॾ ते सिंध इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ वकीलनि जा मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। खैरपुर ऐं रोड़ी में वकीलनि अदालती कार्रवाइयुनि जो बाइकाट करे मुज़ाहिरा कया। वकीलनि जो चवणु आहे त सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। साज़िश कंदड़नि खे मात ॾिनी वेंदी।
1: चक जे कारे तकरार तां जतोई धुरनि में जहिड़ो हिकु ॼणो क़तल, औरत समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी। घर पंहिंजा वारे इलाइक़े में पुराणे तकरार तां कं जतोई बिरादरीअ जे ॿिनि धुरनि में जहिड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में दो जतोई मारिजी वियो। लाश इस्पताल मुंतकिल। धुरनि में तकरार तेज़ थी वियो।
0: मेहड़ में शहरियुनि जो बुनियादी सहूलियतनि जे खोट ख़िलाफ़ प्यादल मार्च। बिलावल कॉलोनी, हमदम कॉलोनी ऐं एजाज़ कॉलोनी में बुनियादी सहूलियतनि जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरीन चयो त टिन्ही कॉलोनीज़ में न घिटियूं ठहियूं आहिनि, न ई पीअण जो पाणी आहे। सफ़ाई बि नथी कराई वञे। मसला हल कया वञनि।

0: रनरो आदम वे जो कुकड़ियुनि जे फार्म ते कम कंदड़ पोरियत पुरसरार नमूने फौत वारसन पारां कतल जो शक ज़ाहिर। ॻोठ इब्राहिम ख़ासकेली वासी 35 सालनि जो मुराद पुटु अंबर ख़ासकेली पुरसरार नमूने फौत थी वियो। फौतीअ जे भाउ चयो आहे त भाउ खे ज़हरीली शइ खाराए क़तल कयो वियो आहे, शफ़ाफ़ जाच कराई वञे।
1: कानपुर में यूथ एसोसिएशन के सर से वधंदड़ बदमनी ए भत्ताखोरी खिलाफ रैली ए धरणो। शहरी ईदगाह का उर्दू स्कूल तक रैली कटी धरणो हो। अगवान है तो पुलिस की नाहेली सबब खानपुर शहर भरपासे में बदमनी चोर चढ़ियल है। पुलिस की सरपरस्ती में मंशा जो विक्रो जुआ जा अडा ए ब्याज हली रो है, नोटिस वरतो वे।
0: भिरिया सिटी भरसां पसंद जे शादीअ तां नौजवान जे घर ते मुबैना हमिलो, फायरिंग में संदसि ज़ाल ज़ख़्मी। ॻोठु अली ख़ान सोलंकीअ में हथियारबंदनि मुबैना तौरु अल्ताफ सोलंकीअ जे घर ते का कई। जवाबदारनि नारी आसत सोलंकीअ खे गोलियूं हणी ज़ख़्मी कयो। मुतासिरनि चयो त 5 हथियारबंदनि फायरिंग करे घरवारीअ खे ज़ख़्मी कयो आहे।
1: कंदकोट में ज़रई ज़मीन मां हिसो न ॾियण तां पीउ खे कंदल कंदड़ जवाबदार गिरफ़्तार। पुलिस चयो आहे त जवाबदार।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर पियारियो। छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।

0: DAFM 88 Network, सिंध की आवाज़।
1: चीजों के बादशाह से है फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनो दादा तमाम खूबसूरत मासूमी सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। के समंदर चाहते की बारिश और आसवल खजानों के साथ दुआ है परसे पल तक आसे कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता समय से आसमान तक जिंदगी से मौत नुकसान से तारदक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमत और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सखर मेहरापुर मादली नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी इज कंप्यूटर शो। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के रावण से प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें की जाएंगी और जनाब आप लोगों को बताया जाएगा कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए आपकी जल्द के लिए और आपके लिए कितना ज्यादा और क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए मौजूद है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में ना सिर्फ इजाफा ला सकते बल्कि अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते, क्योंकि खूबसूरत रहना और खूबसूरती की हिफाजत करना दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो अगर आप भी हसीन बनना चाहते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं, पुरकशिश बनना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर मौजूद है। इस प्रोग्राम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा वाली बातें होंगी, आप लोगों को गाने सुनाए जाएंगे, आप लोगों के साथ मजे किए जाएंगे और जनाब एंटरटेनमेंट का फुल वाला डोज दिया जाएगा जो कि साथ की अगर बात की जाए तो साथ रहेगा ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक मियां के साथ आप हमारे साथ। बिल्कुल जी, तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपनी हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स अंतिके फहालतुन कैसे है आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली है। आपको पता नहीं जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे 2 घंटों का, पूरे 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ करने वाले हैं इन्नी शाली बातें। और इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी आंटियां अमियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। सो भाई अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 और की समा लाने का काम करेगी भाई जान ये सिद्रा। तो बिल्कुल आके होंठों पर 440 और की समाल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, आगे से प्रोग्राम किया जाएगा और प्रोग्राम में आगाज के फौरन बाद ही जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होंगे तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या होने वाला है। सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो आइए जी एक बहुत प्यारा सा जरा कलाम एंजॉय करते हैं। तो साथ रहिए और साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक।

बिल्कुल आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क और यहाँ पर हमारे साथ बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से लोग मौजूद है जनाब। प्रोग्राम में आप लोगों को वेलकम कहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो किस तरह से आप हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो भी जरा आप लोगों को बताएंगे, और इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या होने वाला है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले जो चीज बताने वाली वो ये कि भैया आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज जो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा वो हाँ जी पहेली होगी। ओके, सो आज की जो पहेली होने वाली प्रोग्राम की वो बिल्कुल ये है कि आप मुझे बताएं ऐसी क्या चीज है जिसके दांत बहुत हैं लेकिन वो खा नहीं सकती। हाँ जी, ये क्या चीज हो सकती है जिसके दांत तो बहुत हैं लेकिन वो खा नहीं सकती। तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहती हो, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जनाब तरीकेकार बहुत ज्यादा आसान, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, फेसबुक पर सुनने वाले हैं तो जी लाड़काना FM 88 के पेज पर आइए, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। इससे ये होगा कि बहुत सारे लोगों तक हमारा प्रोग्राम पहुंच जाएगा और बहुत सारे लोग जो है ना वो जान जाएंगे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम उनकी स्किन के लिए कितनी और क्यों जरूरी है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में भी थोड़ी सी मालूम आप लोगों को होनी चाहिए, थोड़ी सी क्या मतलब बहुत ज्यादा वाली मालूम होनी चाहिए कि अगर आप मार्केट चले जाएं तो बस आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करके आए, क्योंकि कई मरतबा ऐसा भी हो जाता है कि जब आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल नहीं होगी तो दुकानदार बोलेगा भाई साहब कुछ और ले जाए, कोई दूसरा प्रोडक्ट ले जाए, ये ज्यादा अच्छा है, इसका ज्यादा आजकल चर्चा है। तो आपने उसे बोलना है भाई साहब थांबा थांबा, हम सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करने आए हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करके जाएंगे। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप भी परचेज करना चाहते हैं तो जनाब जल्दी से परचेज कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं है तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और डायल कीजिए 03-12-50-25-907 पंजाब 25-970 एंड यो नंबर आहे सारे फायदे लेकर आई हूँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को, चाहे आप मर्द हजरात चाहे आप खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक 2-in-1 फार्मूला है। 2-in-1 फार्मूला मतलब अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको रिजल्ट्स जो मिलने वाले हैं वो नेक्स्ट लेवल वाले मिलने वाले हैं, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है, तो आपकी स्किन के अंदर जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो इतने अच्छे मिलेंगे कि आपको लगेगा कि भाई आप बहुत अच्छा कोई महंगा सा फेशियल करा के आए हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं कि आपके चेहरे को एकदम से खूबसूरत बना दे, प्यारा बना दे और पुरकशिश भी बना दे। क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम की ये भी खास बात है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, तो घबराने की और टेंशन करने की तो कोई बात है ही नहीं कि भाई हमारी स्किन सेंसिटिव है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन टाइप है, हम नहीं लगा पाते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती का ख्याल रखिए और जना मुझे बताइए कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल कराने बाकी रहती है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। और अब तो भाई मार्केट में डी स्किन का फेस वॉश भी आ चुका है, फेस वॉश ने भी एंट्रियां मार ली है, तो वो भी आप परचेज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा, क्योंकि फेस वॉश जो है ना वो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों का एक ना ऐसा ड्रीम होता है कि भाई हम भी अच्छा सा कोई फेस वॉश इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो खूबसूरती है ना वो भी जरा अच्छे से निखर कर सामने आ जाए, क्योंकि कई मरतबा हम इन चीजों को समझ नहीं पाते कि कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए बेहतर है और कौन सी चीजें हमें अपनी जिंदगी में अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप बिल्कुल लगा सकते हैं।
हां जी फुल मोकल आ तवां के सो लगाईंदा रहो ये सा के बुधाईंदा रहो तो तवां किथे किथे अप्लाई कई आ अच्छा किथे किथे अवेलेबल कराई आ है तवां अप्लाई कई आ है या फिर कोन अच्छा सवाल जे को पुछो आ ना सवाल जो तवां मखे जवाब दींदा हलो आई जल्दी जल्दी सने प्रोग्राम जो हिस्सो थींदा हलो जिन मानन हाने जॉइन कयो आ नन के बुधाईंदा सी बाबा टॉपिक अजे प्रोग्राम जो इयो पुछो आ है तवां मखे बुधायो वा केड़ी छै आ है जे के दंत त इलाही सारा है पर वा कुछ खाई ना है सगंदी हां जी और इसी के साथ साथ यहां पर हमारे साथ फरवा गुल मौजूद है कहती हैं अस्सलाम वालेकुम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे हाय आप यार कैसी हैं अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे बहुत शुक्रिया जी आपको भी वेलकम कहते हैं नजीर खुसो हमारे प्रोग्राम में बलूचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं कहते कि किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो क्योंकि वो मोहब्बत का तलबगार है ही नहीं बल्कि वो जरूरत का पुजारी है हाँ जी आप सही कह रहे हैं अच्छा फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं विसरे सारो लोग शालन विसरे तू तो कि केडो मुंह सांढियो आहे साह में अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अदा छा हाल आहे खुश आयो सफा चाक सलेट कलम मस्त जी दवी असा भी रुलंदा फिरंदा नेट अची वियासीं प्रोग्राम तो लाजवाब आहे हमेशा जीअं आवां आगे बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपको भी खुश आमदीद अच्छा फरवा कहती है आप ही अर्ज किया है मैं चाहूं भी तो वो अल्फाज ना लिख पाऊं जिसमें बयां हो जाए कि मैं कितनी आपकी इज्जत करती हूं दिल से ओके जी थैंक यू बहुत शुक्रिया अच्छा साजिद खान अच्छा साजिद अली कहती है अस्सलाम वालेकुम कैफा हाल प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह सिद्रा मुस्कान थैंक यू जी थैंक यू आपको भी वेलकम हो गया मुजाहिद मलिक लिखते हैं कि फाइनली आ गई सिडो बड़ा वेट करवाती हो आ तो जी शान का सॉन्ग मेरा रांझना सुनाना मानो बिली अच्छा सुना दो मानो बिली को बोल रहे हो मानो बिली मत बोली गाना मेरा रांझना शायद कल ही तो हमने सुना था आपने नहीं सुना था क्या अपनी पसंद का गाना नहीं सुनते हो फरमाइश पे क्यों करते हो अच्छा ये मोहम्मद जमान हमारे साथ कहते हैं गुड आफ्टरनून स्वीट बुआ जी वेलकम वेलकम कहते हैं आपको भी लिखते हैं ऑसम शो थैंक यू अच्छा मुजाहिद मलिक कहते हैं मैं घोटकी से सुनता हूँ रोज आपको और अजहर भी आपको सुनता है सलाम कह रहा है तुम्हें और आपको अजहर को भी बोल दो अच्छा वेलकम बोल दो ठीक है अजहर आपको भी वेलकम हो गया और मुजाहिद आपको भी वेलकम हो गया डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए घोटकी में आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम से मिल जाएगी सालार सिकंदर हमें सुन रहे हैं सालार सिकंदर आपको भी वेलकम हो गया जिब्रान खान हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है जी मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे कहते हैं लाडली पहचाना या भूल गई जी जी आपको पहचान गई आप बहुत अच्छी और पुराने लिसनर हमारे अब्दुल रजाक भी सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बहन कैसी हैं आप आपका प्रोग्राम नाइस है आपकी आवाज की क्या ही कहने माशाल्लाह डी स्किन जरूर इस्तेमाल करेंगे और सॉन्ग सुनना चाहते हैं डेडिकेट अब्दुल रजाक मुश्ताक अहद ओके भाई सबकी फरमाइशें लगाएंगे जी जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम ठीक हूँ आप बताएं कैसे हैं दर्दी दिल आ चुकी हैं वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून कहती माय फेवरेट मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी कैसी हो वेलकम टू शो यू एंड मी अच्छा समझ गई बहुत शुक्रिया स्वीटी आपको भी वेलकम हो गया थैंक यू के साथ और जिब्रान कहते हैं कि वैसे यहां से गुजर रहा था तो लाडली का शो नजर आ गया सोचा एक फीडबैक कर दूं अच्छा सोचा आपने अच्छी सोची माशाल्लाह चलिए अब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का भी परचेज कीजिएगा और डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी इस्तेमाल करते रहिए क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में लाए इजाफा और आपको बनाए इतना खूबसूरत कि आप बन जाएं खूबसूरत से भी ज्यादा खूबसूरत तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन का फेस वॉश आपके लिए अवेलेबल है और यहाँ पर महर इरफान सियाल साहब भी हमारा शो सुन रहे हैं कहते हैं गुड आफ्टरनून मैम ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे थैंक यू वेरी मच सर आपकी ये मोहब्बतें हैं आप प्रोग्राम सुनते हैं फीडबैक करते हैं और उसके अलावा यहाँ पर टाइम हुआ चाहता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं आपने कहीं नहीं जाना हमारे साथ मौजूद रहिएगा प्रोग्राम सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरी 3 बजे तक टाइम हुआ है जी कमर्शियल का और उसके बाद आप जरा टॉपिक को फॉलो कीजिए मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग वाइट एज आती हूँ सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड इन कीप लिसनिंग वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर माधली मटियारी नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल डी स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है. बिल्कुल जी जनाब खूबसूरतियाँ हासिल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते ये तो जरा बात ही नहीं बनती ना. अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं हाँ ये बात बन रही है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर यहाँ पर बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती में इजाफा इसलिए लाने वाला प्रोडक्ट है क्योंकि ये जनाब 2-in-1 फार्मूला है. क्योंकि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल के फौरन बाद ही आप लोगों को ऐसे रिजल्ट्स मिलने वाले जो कि आप लोगों को किसी महंगे से फेशियल से भी शायद मिल पाते हो. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीड्स हैं माइक्रो बीड्स हैं अल्फा आर्बुटिन है कोचिक एसिड है ग्लूटाथायोन है. बिल्कुल ये सब चीजें सुनने में ऐसा महसूस होता है वाई बेसी आ रही है कि भाई ही तो डाडो मतलब मांगो प्रोडक्ट हूं दो एड़ी कावी गाल कोने का महंगो प्रोडक्ट ना ही बाबा मुनासिब कीमत में तवां के डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही है. आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल का फौरन बाद ही तवां के एड़ो जबरदस्त निखार मिलंदो एड़ी जबरदस्त ब्यूटी मिलंदी जो तवां पाणी चवंदा आए हाय मजा ही अची वया. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका मेडिकेटेड फार्मूले से तैयार थियल है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवां जी हर स्किन के हिसाब से तैयार थियल है चाहे तवां जी स्किन सेंसिटिव है कॉम्बिनेशन टाइप है नॉर्मल है ऑयली है या जे भी टाइप की तवां जी स्किन है हर स्किन के मथा डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करे सकजे थो. और चाहे आप लड़कियां हैं लड़के हैं मर्द हजरात हैं खवातीन हैं हर कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकता है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम से फायदा उठाइए और जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ 2 दिनों में वाजे नतायज दे रही है आपकी स्किन के ऊपर. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करें तो ये चीज भी आपके जहन में होनी चाहिए कि सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल के फौरन बाद आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी परफेक्ट खूबसूरती के लिए बिल्कुल परफेक्ट साबित होने वाला है. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा लेकिन जो आपको नंबर बता रही हूँ ना प्रोग्राम के अंदर उसके ऊपर जरा रब्ता कीजिएगा और नंबर डायल करने के फौरन बाद ही आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल करा दी जाएगी. क्योंकि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलनी चाहिए प्रोडक्ट ताकि आप बस जाएं और परचेज करके आ जाएं. क्योंकि ये चीज भी बड़ी आसान सी हो जाती है कि भाई आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर तमाम प्रोडक्ट्स वो मिल रहे हो जो कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो चाहे आप किसी भी एरिया से हैं किसी भी सिटी से आपका ताल्लुक है किसी भी गांव से आप हमारा शो सुन रहे हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारी आवाज आप तक आ रही है तो मतलब आप हमारे इस प्यारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं. तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश का अवेलेबल कराइए उसके बाद परचेज करते जाइए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप जानते हैं जनाब क्या क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है. तो डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये भाई इतना जबरदस्त इतना कमाल का प्रोडक्ट है कि जब आप ये दोनों प्रोडक्ट परचेज करेंगे चाहे वो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो लगाने के बाद और परचेज करने के फौरन बाद ही आपको एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा कितना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार की गई है आपकी खूबसूरती में निखार लाने के लिए परफेक्ट फेस वॉश साबित होने वाला है. जो लोग कहते हैं कि भाई हम साबुन नहीं लगाते हैं साबुन से थोड़ा सा मतलब आपको मसला होता है आप चाहते हैं भाई कोई हमारे पास अच्छा सा फेस वॉश होना चाहिए तो फेस वॉश में अच्छा सा फेस वॉश अगर आप तलाश कर रहे हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए बेस्ट साबित होने वाला है और वो भी फॉर एवर के लिए. तो डी स्किन का फेस वॉश यूज कीजिए आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी मॉइस्चराइज रहेगी और क्लीन भी रहेगी. तो डीपली क्लीन अगर आप अपनी स्किन को करना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश आप ही के लिए है. डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहिए खूबसूरतियां हासिल करते रहिए और जरा खूबसूरती की दुनिया में कदम रखते जाइए क्योंकि ये आप डिजर्व करते हैं. जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बनते जाइए पोस्ट को जरा लाइक और शेयर किया करें. लाइक नहीं करते हैं आप इतनी कंजूसियां हाय अल्लाह यो सही कौन था अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो जनाब डायल कीजिए 0333 2738 4309 बुड़ी 383 है 73 84 309 आई बो नंबर आहे
603-1250-25907 ॿुड़ी 312 50 25 970 ही ॿई नंबर आहिनि जेके तव्हां डायल करे पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते चाहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वरी डी स्किन फेस वॉश हुजे तव्हां इज़ीली अवेलेबल कराए सघो था. अवेलेबल करायो तव्हां जे लाइ आसानी थी वेंदी, तव्हांखे काॾे ॿाहिरि वञण जी ज़रूरत न पवंदी. बसि तव्हां वञो पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते ऐं तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिलंदी हुजे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा कमाल ई कमाल आहिनि बाबा. इस्तेमालु कयो जीअं तव्हांखे ख़बर पए त डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजी स्किन जे लाइ छो ज़रूरी आहे. अच्छा, मां तव्हां खां सवाल पुछियो आहे. सवाल इहो पुछियो आहे त तव्हां मूंखे ॿुधायो, वो क्या चीज है जिसके दांत तो बहुत हैं लेकिन वो खाती कुछ नहीं है. हाँ जी, और इसी के साथ साथ आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जा रहे हैं. आपके लिए अच्छी अच्छी गाने मैंने जरा लिस्ट में लगाए हैं, तो आइए जरा हम गाने भी सुनते हैं. आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस और फीडबैक्स की जाने भी आ जाते हैं. आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. और जो कंजूस लोग पोस्ट को लाइक नहीं करते हैं ना, अरे भाई कर दिया करें, कोई पैसे नहीं लगते, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें. बहुत सारे लोगों को बताना है कि मार्केट में डी स्किन ब्यूटी क्रीम आ चुकी है. सो एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रिक.

भैया की नजरें कितनी तेज है ना, कसम है मैं कभी कभी थोड़ा सा हैरान हो जाती हूँ, मेरी लिसनर्स इतनी तेज है। अच्छी बात है, साबित कर दिया मेरी लिसनर्स हैं।

स्कूल आयको शेयर करते जा रहे हैं। दर्दे दिल कहती है कि अल्लाह रबे करीम से दुआ है कि वो पाक जात आपकी जिंदगी में इत्मीनान कल्ब की ऐसे दिए रोशन करे जिनकी रोशनी कभी मध्यम ना हो, खुशी के ऐसे फूल खिले जिनकी खुशबू और ताजगी कभी मानद ना पड़े, चेहरे पर खुशियों से भरपूर मुस्कुराहट हमेशा बरकरार रहे, खुश रहें, शाद रहें, मुस्कुराती रहें और खुशियां बांटें, हमेशा मुस्कुराहट लबों पर सजाए रखें। बहुत शुक्रिया जी, आमीन, थैंक यू, आप हमारे साथ हैं दर्दे दिल। ऐसे नारबानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, उलैल सलाम अदर। ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, कैसी हैं आप? वेलकम, आपको भी वेलकम हो गया जी। और ये हमारे साथ ही हमारी निधि कहती है अस्सलाम वालेकुम स्वीटी आरजे, वेलकम टू शो, कैसी हो शोना, टॉपिक ओके ओके। दर्दे दिल कहती है ये क्या है, यानी कि सवाल के ऊपर बोल रही है। अच्छा, उन्होंने कहा अलावा फहीम तमाम भी टॉपिक जो जवाब देने हुआ है, और निधि आपने क्या ही टॉपिक का जवाब दे दिया है।

बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किया या फिर अभी तक कर रहे थे आप। लिस्ट में आइए जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाने वालों की लिस्ट में आइए। और जी साथ साथ निदड़ी की दी आवाज से लग रहा है तभी कुछ ठीक नहीं है, यू की नहीं, मैं बिल्कुल फिलफाट अल्हम्दुलिल्लाह। आप बहुत दिनों के बाद शायद सुन रही होंगी इसीलिए आपको ऐसा लगा होगा। और चाचा खालिद कहते हैं हाय सिद्रा कैसी हो, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं चाचा कैसे हैं। अच्छा ये हिदायतुल्लाह कहते हैं सलाम कैसी हो, ये सॉन्ग चलाना दिलबर का। वैसे ये कॉपी सॉन्ग है तो आपके प्रोग्राम का वो क्या बोलती हो ना टेम्पो भी खराब नहीं करेगा। चले ठीक हो गया, मैं देखती हूँ मुझे मिल गया तो लगा लेते, नहीं तो आप ऐसा कीजिएगा जरा मुझे लिंक शेयर कीजिएगा।

कहा वाइन स्टेशन डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया जी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको बना देगी ऐसा खूबसूरत जैसी खूबसूरती आप हासिल करना चाहते थे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरती को पहचानिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर विटामिन ई बीट्स हैं और माइक्रो बीट्स भी, यानी कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको ऐसे रिजल्ट्स देने वाली है जैसे आपने कोई महंगा सा फेशियल कराया हो। तो जल्दी से आइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज कीजिए, खूबसूरत होते जाइए। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी इन हो चुका है मार्केट में। तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें तो साथ में डी स्किन का फेस वॉश भी परचेज कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती चाहिए वो भी मुकम्मल वाली। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए, आपके जल्द के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस्तेमाल करते रहिए और मुझे बताते जाइए कि आपके एरिया में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और हाँ, आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं।

साजिद अली, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगी, जामिन का गाना लगाएंगे और बहुत अच्छा वाला गाना लगाएंगे। ठीक है चाचा, कहते हैं आपकी आवाज बहुत अच्छी है, अपनी आवाज में सॉन्ग तो सुनाए, मैं कोशिश करूंगी आपको गाना सुनाऊं। और कहते हैं कि हवाओं में, अच्छा ये वाला सुनना चाहते हैं, ठीक है जी कोई दूसरा ना सुना दूं। अच्छा नजर मोहम्मद भटिया में सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं आज मेरी पसंद का सॉन्ग चलेगा सनम आरवी, मैं कोशिश करती हूँ जी। और फहीम भाई कहते हैं कि पानी से प्यास ना बुझी तो मैं कदे की तरफ निकला, सोचा तेरी शिकायत बस कर दे देश के ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। और नसीम गुलाम दीन भाई, वालेकुम अस्सलाम, विलेज अली बख्श जकड़ो खां, आपका शो आपकी तरह है बहुत अच्छा और हम नूरियाबाद वाले वेट करते हैं किस चीज का, मेरे प्रोग्राम का, सच्ची बता दें।

क्या बात है जी, क्या बात है। आपके कॉमेंट ऐसे धड़ाम धड़ाम आते जा रहे हैं, ऐसे पोस्ट को भी लाइक कीजिएगा। ज़ाहिद अली बुर्दी कहते हैं ब्यूटीफुल एंड नाइस एवन शो सिर्फ 88 पर सदरा मुस्कान गुल गुलाब जो जियो करे से अल्लाह। अच्छा मोहम्मद अली खुसू भाई हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अटियारी से आपने हमें ज्वाइन कर दिया, बहुत शुक्रिया। चौधरी कहाफुल्ला मेथलो हमारे साथ, वालेकुम अस्सलाम जी, कहते हैं कैसी हैं आप? मैं ठीक हूं जी, आप बताएं आप कैसे हैं? परवा आपने टॉपिक का जवाब दिया, ठीक है जी। रशीद खुसू भाई हमें सुन रहे हैं हैदराबाद से, भाई को वेलकम कहते हैं।

जी क्या बात है, बड़ा प्यारा गाना एंजॉय कर रहे हो। यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद है वो सारे लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको वो खूबसूरती मिल रही है जो कि आप हासिल करना चाहते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराइए, लेने में आसानी हो जाएगी ना, ये इसलिए कहती हूँ। तो जो नंबर आपको प्रोग्राम में बताए जा रहे हैं उनके ऊपर जरा रब्ता कीजिएगा और अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।

खोसो भाई और बाबल खोसो अयूब भट्टी कहते हैं हमारा प्रोग्राम सुन रहे, बहुत शुक्रिया जी। और साजिद भाई लिखते हैं कि कभी किसी से प्यार मत करना, अगर हो जाए तो इनकार मत करना, अगर निभा सको तो चलना उस राह पर, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद मत करना। क्या बात है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने शेयर कर दी है। और नसीम भाई लिखते हैं कि जब वक्त खराब चल रहा हो तो पीछे से हंसने वाली आवाजें जानी पहचानी लगती हैं। क्या बात बोल दी। और कहते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेहतरीन है, हमने यूज की है। जिस बहन भाई को गिफ्ट चाहिए हमसे राबता करें, मैं सबको शो सुनने वालों को गिफ्ट करूंगा, जिसको गिफ्ट चाहिए मत करें भाई, सबको बोलें भाई अपनी अपनी लें, ये मानन के थोड़ो मतलब जेको आ ना इंडिपेंडेंट बनायो, वो मतलब आसरे में न रहन, सो आसरा अगर तुम रखंदा ना, ये आसरन वारियूं चीजूं ॾाढियूं कमजोर हूंदी आहे। सो भाई पाण वेठो गिफ्ट जे आसरे न लॻो, स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो ऐं सुहिणा थी वञो।

तमाम जी अगर आप भी मैजिक दिखना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिएगा. डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के फौरन बाद ही आपको इतना खूबसूरत सा निखार मिलेगा कि आप खुद ही कहेंगे जनाब क्या बात है क्या बात है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है. तो इस्तेमाल करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए.

0: अच्छा मलेज इकबाल लाशारी हमारे साथ हैं मीरपुर खास से, आप हमारा शो सुने कहते सिद्रा सवाल का जवाब है बिल्कुल ओके न्याज भट्टी कादरी हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम अलैहिस्सलाम अदर। अच्छा मटिहारी खान तवां सा के ज्वाइन करवाए भांजू मोहब्बत वाइन तां मोहब्बत सा सने प्रोग्राम बुदन आयो, सो थैंक यू वेरी मच। अच्छा चाचा कहते हैं तो के खबर आ चाचा गानन जो शौकीन आ है तो गाना प्ले कर। अच्छा ठीक आ मां डी स्किन ब्यूटी क्रीम सेल कराए डींदुस डोंट चले अच्छी बात है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप परचेज कीजिएगा। और उनका अलावा एसन कहते हैं मेरे कमेंट से हाँ हाँ अच्छी बात है अच्छी बात है चाचा कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम ने धूम मचा दी है हाओ को शक को ने नगाल में। आमिर खान महेश्वर हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम, सरमन सिंधी जो गानो तवां के बिल्कुल बुधराई नासी मोहब्बतों प्रोग्राम बुधो प्या। निजाम भट्टी कादरी भाई थैंक यू सो मच आप हमारे साथ हैं। और जी आपके साथ ही नियाज भट्टी, निजाम भट्टी, अली शेर भट्टी, फराज भट्टी, जायद भट्टी, फरहान अली भट्टी, ओके सब भट्टी ब्रदर्स को बोलिए कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें ठीक है। अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाऊ या तारीफ आए या टोकू, तारीफ हुई बाबा तारीफ। अच्छा हिदायतुल्लाह आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है, नसीम भाई आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है ठीक है। ओके तो प्रोग्राम में साथ रहिए और सुनती रहिए हमारा प्रोग्राम, यहाँ पर टाइम हुआ है जनाब हम जाएंगे न्यूज ब्रेक की जाने उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास, सुनती रहिए और हमारा साथ दीजिए क्योंकि आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, यूज करते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GAFM 88 की आवाज,
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream. Asli glow, har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
5: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
6: खबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट में बम धमाके में मुलविस समूरा दहशतगर्द मार जी वाया, सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मिल कर वरतो, सिक्योरिटी जरिए मौजूद पुलिस लाइन में लिकल बिना आपघाती बमबारन के भी मारो वो है। कार्रवाई दौरान मजमूई तौर से 8 दहशतगर्दन के मारो वो, कमांडोज ए बम डिस्पोजल स्क्वाड इलाके के क्लियर किया वो है। ऑपरेशन की निगरानी जनरल ऑफिसर कमांडेंट कोहाट कई।
7: सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलोचिस्तान में कार्रवाई 11 दहशतगर्द मार जीविया, सिक्योरिटी जरिए मौजूद जागी फोर्सेस की कार्रवाई दौरान 6 पंजोर में 5 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो किया वो। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी पारा फोर्सेस के दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से भेटा पेश।
6: वागेल वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल सूबन के क्याम बाबत कानून में तरमीम करने जो मुतालबो कर छो, मुस्तफ़ा कमाल है तो अस इंतजामी यूनिट्स जहा हामी आयो, इंतजामी यूनिट्स के क्याम के लीड कदड़ असो हीरो हों, गार कदड़ बुधी छन तो गारन से काफिला ना रुकबा, अस कें भी कौम खिलाफ ना गालों, रुगो पीपल्स पार्टी की गाल कई है, करप्शन कदड़ बुजदिल हों, कदें भी पैं जान ना डी अस कुर्बानी दियण ला तैयार आयो।
7: ईरान सा जंग जल्द खत्म थी वेंदी, जंग के खात्मे से तेल भी सस्तो थी वेंदो, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चया त तारान के एटमी हथियारन का रोकने लाए फौजी कार्रवाई जरूरी हुई, ईरान ते बमबारी न कयो हा त एटमी हथियार ठाए वंजा, सदर ट्रंप रूस ए ईरान ते पाबंदी मरण वारो बिल ते भी सही करे छियो।
6: दुश्मन की कहीं भी गलती जो ताकत से जवाब देने लाए सौ सैकड़ो तैयार आयू पासदार इनकलाब के कमांडर मोहम्मद करमी है तेहरान जारी जो जवाब देने की भरपूर सलाहित रखे तो मुल्क दुश्मन अंसर के मुंह देने लाए टे लख जान निसार के सरगर्म कर
7: ट्रंप सीएनएन समेत मीडिया के टिन इदारन ते व्हाइट हाउस में दाखिला ते पाबंदी लगाए छी पाबंदी हेठ आयल इदारे में एमएस नाउ पॉलिटिको नाले खबरू इदारे भी शामिल समाजी वेबसाइट ते जारी कल बयान में सदर ट्रंप चया ते टई इदारा लगातार इंतजाम खिलाफ कूड़ ख्याली खबरू हलाए रहा है
6: जडे इस्लामाबाद लाइ निकरंदासीं त हर सूरत में पहुचंदासीं पेट्रोल तां लेवी जे खात्मे ताईं लॉन्ग मार्च ख़तम न कंदासीं लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो आहे त हुकुमरान करप्शन ऐं फुरलुट ख़तम करण लाइ तयार न आहिनि IMF रुगो बहानो आहे हीअ अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयार न आहिनि
7: सिंध बार काउंसिल के सद से सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ वकीलन जा मुख्तलिब शहरन में मुजाहरा हैदराबाद खेरपुर ए रोहड़ी में अदालती कार्रवाई जो बाइकाट ए मुजाहरा वकीलन जो चवण है तो सिंध जो विरांगो कें भी सूरत में कबूल ना है साजिश कंदड़न के मात डिनी वेंदी
6: तकरार तां जतोई धुरिन में जेड़ो हिकु ॼणो कतल औरत समेत ॿ ॼणा ज़ख़्मी घर पंहिंजा वारे इलाइक़े में पुराणे कारे तकरार तां जतोई बिरादरी जे ॿिनि धुरिन में जेड़ो थियो फायरिंग जे नतीजे में दो जतोई मारिजी वियो लाश इस्पताल मुंतकिल कयो वियो आहे धुरिन में तकरार तेज़ थी वियो
7: मेयड़ में शहरनि जो बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ प्यादल मार्च बिलावल कॉलोनी हमदम कॉलोनी ऐं एजाज कॉलोनीअ में बुनियादी सहूलियतुनि जी खोट ख़िलाफ़ इतिजाज कयो वियो मुज़ाहिरनि चयो त टिन्ही कॉलोनियुनि में न घिटियूं ठहियूं आहिनि न ई पीअण जो पाणी आहे सफ़ाई बि नथी कराई वञे मसाला हल कया वञनि
6: टंडो आदम वेझो कुकड़ियुनि जे फार्म ते कम कंदड़ पोरेत पुरेसरार नमूने फोत थी वियो वारसनि पारां कतल जो शक ज़ाहिर घोटु इब्राहिम ख़ासि केली वासी
8: वो कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा कौन
6: जहरीली शय खाराए कतल कयो वियो आहे शफ़ाफ़ जांच कराई वञे

0: जरके सें बंगार छाख जे पुछड़ में पानी खोट खिलाफ आबाद करण जो एहतजाज आबाद करण बे डी बे मलकानी शरीफ में मेन बस स्टॉप ते एहतजाजी मुजाहरो करे धरणो आयो आबाद करण परां शाखन जे पुछड़ ताईं पानी पहुंचाइण जो मुतालबो एहतजाज जारी रखण जो चिता
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
3: अमा जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो आहे
4: या पंहिंजी पुरानी गाड़ी विकणण चाहियो था त पोइ अचो बालाज मोटर्स मोरो ते

0: 0440 GA FM 88
1: सिंध की आवाज बाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जी, प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बातें हो रही है, क्यों ना हो जनाब, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको इतने खूबसूरत, इतने हसीन और इतने जाज़बी नजर बनाने वाले हैं कि जब आपको दुनिया देखेगी तो आपसे पूछेगी कि बताएं तो जरा ये आपकी खूबसूरती का क्या राज है, और आप उन्हें बताइएगा जनाब बेफिक्र होकर कि ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी है, तो बस जाइए और परचेज कीजिए। अच्छा, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बताया करें कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर भी अवेलेबल कराना चाहते हैं तो पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को नंबर बताया जाता है जिसके ऊपर रब्ता करके आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक हो गया जी, तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदी। बिल्कुल, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। आज मैंने आप लोगों से प्रोग्राम के अंदर सवाल पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि ऐसी क्या चीज है जिसके दांत बहुत है लेकिन वो कुछ खा नहीं सकते। ओके जी, सो जल्दी से आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, और मैं आपको डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बता रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी सी बेसिक सी चीजें तो मैंने आप लोगों को बता दी कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये मेडिकेटेड फार्मूला है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आए ही वाइटामिन ई बीट्स अथस माइक्रो बीट्स अथस अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो आए अगर निशानी के तौर ते तमा वनो था कि खबर ना है तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की असा परचेज करें, यानी कि तमा के दुकानदार चूनो लगाएं था तो तमा उल्टो दुकानदार के चूनो लगाया बाबा हां उनके चो तो बाबा असा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी खबर आए आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी मथा डॉक्टर माई जो फोटो आए। ठीक है, अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा परचेज करण वनो था तो या निशानी सफा इनफ आए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी मथा डॉक्टर माई जो फोटो आए सफा या निशानी तमा के अगर खबर होंगी ना तो पोई तमा वेंदा तो तमा आराम सा डी स्किन ब्यूटी क्रीम ही परचेज करेंगा। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा के गोठ में आयो, तमा के शहर में आयो, हर जगह ते तमा वनी आराम सा जको ना परचेज करे सको था। पर एकड़ी यहां भी गाला है अगर तमा जे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल ना है तो तमा के जेके नंबर बुधाए वणन था उन नंबर से राबतो करे ता पाजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल भी कराए सको था। ओके जी, तो खूबसूरती तो हम लोग सारे लोग ही चाहते कि भाई हमें खूबसूरती मिलनी चाहिए। ये जो चेहरे पे निशानात हैं, ये रिंकल्स हैं, या फिर अपनी उम्र से बहुत बड़े लगना हमें स्टार्ट हो चुके हैं, ये सब इस वजह से होता है क्योंकि आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखते, और चेहरे का ख्याल ना रखा जाए, मुनासिब सी केयर ना की जाए तो भाई आपकी चेहरे की स्किन जाहिर सी बातें डल होने लग जाती है, आपके चेहरे की स्किन मुरझाने लग जाती है, आपके चेहरे पर जो है ना रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं भाई खूबसूरती हमें कैसे भी करके अब हासिल करनी है, टोटके लगाना और ये तरह तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट से आप बेजार हो चुके हैं, तो आपके लिए आसान सा प्रोडक्ट है जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। और सबसे बेहतरीन बात की ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना स्किन से रिलेटेड डॉक्टर्स, उन्होंने मिलकर ये फार्मूला तैयार किया गया है, और ये इतना प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि भाई हम वाकई कुछ अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो खूबसूरती हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन खूबसूरत के साथ ऐसा होता है ना, खूबसूरती के साथ साथ आपकी जल्दी जो होती है वो एक अच्छी सी केयर भी जा रही होती है, और जरूरी यही हो जाता है कि आप अपनी रोजमर्रा ब्यूटी के रूटीन में एक खूबसूरत इजाफा करें और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। तो बिल्कुल जनाब, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी रूटीन का हिस्सा जब आप बना लेंगे ना तो ये क्रीम आपकी रोजमर्रा स्किन केयर को मजीद आसान और खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है, और आपके जल्द को नरम, मुलायम और सॉफ्ट रखेगा, और साथ ही साथ आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी स्किन केयर जो है वो बहुत ज्यादा आसान भी हो जाएगी। तो अच्छी तरह अगर आप अपने चेहरे का ख्याल रखना चाहते हैं, खूबसूरती को जरा निखारना चाहते हैं, खूबसूरत खूबसूरत रहना चाहते हैं, चेहरे को ताजगी देना चाहते हैं और हमेशा ग्लो में रहना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों के लिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल ये बात बड़ी मजे की और कमाल की बताने लगी हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को सिर्फ खवातीन इस्तेमाल करेंगे, आप मर्द हजरात भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर सकते हो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप सब लोगों की स्किन से रिलेटेड है जनाब, सारे लोग इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरती का जरा फायदा उठाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते जाइए। और साथ में आप लोगों के लिए डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल हो चुका है, और फेस वॉश अगर बात की जाए फेस वॉश भी कमाल का प्रोडक्ट है, और डी स्किन का जो फेस वॉश है ना ये हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है और ये जो सीरम होता है ना ये इतना कमाल का होता है आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को डीपली क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को हमेशा के लिए क्लीन और खूबसूरत बना देता है। दिन भर की मसरूफियात के बाद जब चेहरे पर थकन और ये तमाम गर्दोगुबार आपके चेहरे पर आ जाती है या फिर एक्स्ट्रा ऑयल आपके चेहरे पर जमा हो जाता है तो ये सब चीजें जब हद से ज्यादा बढ़ने लग आप इस्तेमाल कर सकते हो। रोजाना इस्तेमाल से मुराद यही है कि आप डी स्किन का जो फेस वॉश है ना दिन में 3 से 4 मरतबा लगाइएगा, ठीक है, यानी कि सुबह को लगाया, दोपहर को लगाया, शाम को लगाया, रात को सोने से पहले तो फेस वॉश लाजमी किया कीजिए। रात को फेस वॉश जो होता है ना वो बहुत सारे जल्द के मसाइल से आपको दूर रखता है, तो रात का फेस वॉश मतलब अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए और डी स्किन का फेस वॉश यूज करते रहिए। सुबह के वक्त लगाएं या दिन में लगाएं या रात में लगाएं, हर वक्त जब भी आप लगाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट आपके एरिया में अवेलेबल हो चुका है। तो जनाब डी स्किन का फेस वॉश आप यूज करते रहिए, खूबसूरती में जरा इजाफा देखिए और हमेशा खूबसूरत रहिए। उन खां अलावा अगर तुम पानी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराइन चाहिए था उन चला तुम के नंबर बुधाए वे नाइन प्रोग्राम के अंदर से तुम डायल करे पानी करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सको था। सो नंबर आई जनाब 0332738439 बड़ी 300 है 73 84 309 नंबर आहे 0312502590 बड़ी 312 50 25 970 सो ही नंबर साइन जी डायल करे तां पाजे करे भी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश के अवेलेबल कराए सको था। सो दा वनु असांजी पोस्ट के लाइक एंड शेयर कंदा वञो बाबा, पांजे हुजन जो सबूत जो तमा जिंदा आयो मके खबर हुजन घुर्जे। आई पैनल ते अगर नजर दौड़ाया थी तो पैनल ते तमा जा कुछ फीडबैक्स आहन, आई पैनल ते इंदासी बाबा, पैनल ते भी इलाही सारा मानू असा से गड वेठा है, आई इलाही इलाही गाल

ओगली सो ये हमारे साथ है नेक मोहम्मद पालारी फ्रॉम नूरियाबाद, कहते हैं बाजी सदरा मुस्कान आपके शो की क्या ही बात है, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई आपकी मोहब्बतें होती हैं। मीरपुर खान से अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और चाचा खालिद भी हमारे साथ पैनल पर मौजूद है, और पैनल से तमाम टॉपिक जो जवाब दिनो है, ठीक है जी, ठीक है। और ये हमारे साथ मौजूद है सलाम सटो बाजी, मुझे लगता है हकीकत में जी जी भाई आपको बिल्कुल सही लगता है और आपने आगे क्या लिखा है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। फिरदोस मोरो से, थैंक यू वेरी मच फिरदोस भाई, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ ही चाचा खाले तमाम गाने जी फरमाइश कई, ठीक है जी। अच्छा फिरदोस भाई सागो मैसेज तमाम दोबारा शेयर करे छो आए सोने जिला भी मोहब्बत तमाम जो लख लख थोड़ा तां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो कोन मुखे बुधाए जो। और ये हमारे साथ हैं भाई, मैं जो भी हूँ पर एक बात की हम यूजर हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के, तो हमारे लिए सॉन्ग लगा दो, मास्टर मंजूर का सॉन्ग है हीरो जेड़ो अच्छो, ओके ये कमाल है डी स्किन ब्यूटी क्रीम का, थैंक्स शो एंजॉय कर रहे हैं भाऊ, बहुत शुक्रिया प्यारे भाऊ। और कहते हैं भाऊ थोड़ी हाजिर हाजिर

अच्छा गुलाम शबीर अबड़ो हमारे साथ कहते बाजी सदरा आपकी पहेली का जवाब है बिल्कुल सही जी बिल्कुल सही और कहते हैं अच्छा गुलाम हुसैन उमरानी का सॉन्ग सुनना चाहते हैं अच्छा मैं कोशिश क्या थी भाजला गानों हलाइंदा से मिठपुर खास अब्दुल्ला महर कहती है सलामकुम बाजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है बहुत बढ़िया जी इस्तेमाल करते रहिए ऐसे ही मंजूर अली खास के लिए है झंडो मरी से आप हमारा शो सुन रहे हैं क्या बात है मंजूर भाई आपको वेलकम हो गया ये लिखते हैं कि जिसने अदा सीख ली गम में मुस्कुराने की उसे क्या मिटाएगी गर्दिशे जमाने की ये पोएट्री आपके लिए थी भाऊ बहुत बढ़िया

मस्तानी चाल दिसी। बिल्कुल जी, जी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा तो दीवाना थींदा के फजली हमारे सादे फजली के दी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून। माय स्वीट बेस्ट आरजे शहजादी सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो जानू मीठी गुन, तुम बताओ कैसी हो। तेरी सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम और कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ओके जी, ओके। और ये भाई साहब लिखते हैं, हेलो सिद्रा आपी, हेलो टू यू। और कामरान भाई हमारे साथ हैं। कामरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा। और इन्होंने लिखा है, अच्छा मुन्नवर अली मुगल भाई हमारे साथ ही मीरपुर खासी कहते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपकी तरह। ये जो आगे आपने लिखा ना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बस आप भाइयों की मोहब्बतें कि मुझे इस काबिल समझते हैं, वरना तो असा इन काबिल का थे बाबा। अच्छा ये मौजूद है, हेलो सिद्रा आपी, मैं जेबुन निसा आंसर आपने दिया है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आपको लास्ट में बताया जाएगा कि आपका जवाब सही था या गलत था, ठीक है जेबुन निसा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। इरम कहती है, प्यारी दिलबर दोस्त, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है आपकी तबीयत मुझे लग रहा है कि अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो बहुत शुक्रिया इरम, आप हमारे साथ एंजॉय करिए प्रोग्राम को और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करती रहिए।

हिकड़ी माण्हू खे ॻाल्हि न वणी शायदि ईअं न नंढड़ी अजय शमन जे गाने जी जिन जिन फरमाइश कई न ही गानो उन्हनि सभिनी भाउनि खे डेडिकेट आहे निदड़ी कहती है कि उदास रह के लोग दुखी आत्मा बन जाते हैं और मैं चालाक बनती जा रही हूँ या

ओके जी निजाम भट्टी भाई वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम और ऐसन कहते लिस्ट में अजे थोड़ी जगह छड़े जा असा भी गानो खणी आया आयो बिल्कुल बिल्कुल तमा जो गानो हलाण जी फुल कोशिश कंदा सी अखलाक भाई में सुन रहे हैं अखलाक भाई कहते नाइस यो थैंक यू वेरी मच प्यारे अखलाक भाई जान और चाचा कहते हैं अच्छा कहते हैं आपके शो को मैंने इंडिया में भी शेयर कर दिया बहुत अच्छा किया बहुत

तो दर्दे दिल आपने भी टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है स्वीटी। निदड़ी कहती है कि मैंने ख्वाब में एक दोस्त की शादी देखी थी, तो इसका मतलब बताओ क्या सच में उसकी शादी होगी या और लेट शादी होगी उसकी? होने वाली है उसकी शादी, टेंशन ना ले। हाँ जी नहीं मुल्कता बार ये ना भाई, कुछ ख्वाब सच्चे होते हैं तो हाँ जो भी सच्चे हो।

सिद्धार्थ दुला कहते हैं तेरे प्रोग्राम में नाचेंगे, नाचो नाचो। अच्छा निधड़ी, कौन सा गाना था उस टाइम? पता नहीं कौन सा गाना चल रहा था, बताओ मुझे तो, जरा नाम बताती हूँ तुम्हें।

हाओ टाइम ॿुधाए अचूं था बसि पंध में आयो ऐसा कहते हैं टाइम तुम्हें तो पता है इंतजार मौत बराबर आ हाँ बाबा सही था चो सही था चो और कहते हैं सॉन्ग आ मास्टर मंजूर जो ऐसा गानो अगर इन प्रोग्राम में हली वो तो ठीक है न तो असा पंची बजे वाले प्रोग्राम में सकून असा बुधंदी सही अच्छा फहीम भाई कहते हैं भाओ मैडम ने डी स्किन ब्यूटी क्रीम खरीदी है रात उसने फोटो निकाल कर भेजा था वाह सही वाह डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो इस्तेमाल करो सब सोना सोना थी वेंदा।

अच्छा फरवा तव्हांखे प्रोग्राम वणे थो थैंक यू सो मच तव्हां वैसे गाने जी फरमाइश कई छा मूंखे मिलियो त कोन तव्हांजो गानो ॾिसी वठूं था तव्हांजो गानो आहे त हलाए वठूं था ऐसन कंहिं ते असां दुकान वारे खे चूनो कीअं लॻाईंदा हूं ख़बर अथव चवंदा हूं इहा क्रीम रख हुन दुकान ते ॾिसी ॾिसूं न मिली त इहा पोइ वठंदासीं हा हा सही था चओ सही था चओ अच्छा लाडकाना में आज गर्मी कुछ बेहतर है हाँ कुछ बेहतरी अच्छी भैया

बिल्कुल जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कबो कबो कबो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कबो कहाँ भी सब डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो बाबा। अच्छा फरवा की दी अभी सारे ख्वाब पूरी नहीं होते लेकिन कुछ तो होते हैं। अच्छा हाथ में गुलाब वरी की जो याद अच्छी हुई हो चलें जी, यहाँ पर टाइम हुआ है हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानम जाते हैं वरना हंसा हंसा के मेरी हालत बुरी कर देंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होगी, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते, आपने कहीं नहीं जाना, यहीं पर मौजूद रहिएगा। मैं यूं जाकर यूं वापस आते हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी क्रीम। लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

0: This program is brought to you by
1: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: जो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
5: GFM 90.8.

0: इस वेल्थ का हिस्सा बनिए हेल्थ एक्सपर्ट या प्रोग्राम स्पॉन्सर के तौर पर। स्पॉन्सरशिप के लिए आज ही रब्ता करें आगा जब्बार 03009312700।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: सचल की सरमस्त धरती
3: फातिये मेहरान सिंध की एक और पहचान
2: GFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज।

क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हो, साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। White Asian D-Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है D-Skin Beauty Products के तावन से, और यहाँ पर D-Skin Beauty Products आपके खूबसूरती के लिए हैं जनाब। अगर आप भी D-Skin Beauty Products का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, सारे लोग खूबसूरत हो जाए, बस आप ही पीछे रह जाए। तो जल्दी जल्दी से D-Skin Beauty Cream का इस्तेमाल करते रहिए, और D-Skin Beauty Cream आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा दी गई है, लेकिन फिर भी आप फर्ज कर लीजिए, अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुई है तो आपको जो पूरे प्रोग्राम में नंबर्स बता देना उनके ऊपर बस राबता कर लिया गया, या तो आप कॉल करेंगे या तो फिर आप मैसेज करेंगे, उन्हें बता दीजिए कि आप भी चाहते हैं कि अवेलेबल हो जाए हमारे एरिया में D-Skin Beauty Cream। या फिर ऐसा वाला सीन है कि D-Skin Beauty Cream तो मिलती है लेकिन D-Skin फेस वॉश नहीं अभी तक अवेलेबल हुआ, तो उसके लिए भी आप नंबर के ऊपर राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर D-Skin का फेस वॉश अवेलेबल कराइए, क्योंकि D-Skin Beauty Cream तो पहले से अवेलेबल हो चुकी थी लेकिन फेस वॉश अभी अवेलेबल कराना बाकी है आप लोगों, तो जल्दी जल्दी से अवेलेबल कराइए, खूबसूरत होते जाइए, खूबसूरती की दुनिया में कदम।

फायसा के गाने की फरमाइश थी तो हमने ये वाला गाना आप लोगों के नाम कर दिया। और जी गाना एंजॉय कीजिए और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप अभी अभी हमें सुनाया स्टार्ट कर चुके तो आपको वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ अगर आप खूबसूरती की बात कर रहे हैं या फिर खूबसूरत बनना चाहते हैं, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हम खूबसूरत बने, खूबसूरती की दुनिया में हमारा भी नाम हो जनाब, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके अपनी खूबसूरती में इजाफा ला सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में ये चीज तो बिल्कुल आप जानते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई प्रोडक्ट है। तो जो लोग ये भी सोचते हैं कि भाई हमारी स्किन के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है, हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, हमारी स्किन पे मसला हो जाता है, रंगत आपकी बहुत ज्यादा डल हो चुकी है या फिर आपके चेहरे पर बहुत कुछ ऐसा हो चुका है,

आप लाजमी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके देखिए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे को बिल्कुल खूबसूरत, हसीन और प्यारा प्यारा बनाने वाली है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज आपको बहुत ही अच्छा साबित कर देगा। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप मर्द हसराते खवातीन हर कोई यूज कर सकता है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल है, तो आप दोनों चीजें साथ में परचेज कीजिएगा। यूज करते रहिए और जरा अपने चेहरे का ख्याल रखिए, और इसके साथ साथ नंबर्स के ऊपर राबता करते रहिए जो कि आप

ओके जी, अनवर भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं उसा बुखारी तो में आहे नाज आहिन, तो में उहे नाज आहिन, तो में उहे अंदाज आहिन, जिन लाइ असांजो दिलियो सदक ऐं न्याज आहिन, ज़ुल्फन खे न लोड इहे वाव में मिठा, केतरा ई दिलन जा हिते राज ऐं न्याज आहिन। वाह वाह वाह वाह, शायद सही रीड कर ली मैंने। अच्छा, उन खां अलावा फहीम कहते भाऊ आपने खोला है क्या बात है, अच्छी बात है, चलिए अब दुकान खोलीजिए, डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसमें मिलती हो। अच्छा, रमजान भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम।

भट्टी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, इतने सारे आपने कॉमेंट्स कर दिए, हजार भाई आ चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रमजान भाई लिखते हैं कि दिल को तेरे दीदार की आस रहती है, इन नजरों को तेरी सूरत की प्यास रहती है, मेरे पास किसी चीज की कमी तो नहीं दोस्त, मगर तेरे बगैर जिंदगी उदास रहती है। क्या बात है, बढ़िया हो गया। चाचा खालिद तव्हां बि असां सां गॾु मौजूदु आहियो, ॾिसूं था चाचा तव्हांजो गानो हलियो त हलायूं था, न त 5 बजे प्रोग्राम में असां लाज़मी ॿुधी वठंदासीं। ठीकु आहे, हिते डिफेंस कराची में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल, क्या बात है, वाह वाह। अच्छा जिब्रान कहते वैसे देखा जाए तो मैं 2-3 साल बाद वापस आया हूँ, लेकिन यार तुम्हारी वॉइस वैसी की वैसी है, कोई चेंज ना कुछ। लोग 4-5 दिन बाद आकर कहते सदरा तांजी आवाज चेंज थी वही आए। आप कह रहे वैसी की वैसी, हाँ हूँ तो मुख्य लगन हो वैसी की वैसी है, मेरे मानू ही अच्छी आऊँ, थोड़ी फंटागिरी कंदा है। आवाज भी भला चेंज थी सके थी चा। हाँ वो बात अलग है कि जैसे जैसे इंसान बढ़ता है, बड़ा होता है, तो चेंजेस तो जाहिर सी बात है वो आती हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल चेंज हो जाए वो अलग बात है। जी जी बिल्कुल, डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाईंदा त खीर जहिड़ो अछो थी वेंदा, तव्हां सभु डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कजो। ठीकु आहे किशोर भाई कहते अदा, छा अॼु बि तव्हांजो कॉमेंट ना आया आहिनि, ईअं न कजो बाबा।

हांजी बिल्कुल बिल्कुल लाड़काणी वारे माण्हू जी त ॻाल्हि इहा लॻाए लाड़काणी में चवंदा आहिनि घणी सूं आहे इन जे करे छो त लाड़काणी वारा माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कंदा आहिनि. अगरि तव्हां बि सुहिणा थियणु चाहियो था त तव्हां बि बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस करे सघो था. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम मां फ़ाइदो वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस कयो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां अगरि तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे. डी स्किन जो फेस वॉश अगरि तव्हां इस्तेमालु करणु चाहियो था त उहो बि तव्हां करे सघो था. पोस्ट हिन ताईं तव्हां लाइक ऐंड शेयर नाहे कयो न जल्दी करे वठो बाबा टाइम असां वटि बचो वञी सफ़ा थोरो आहे. सो हिते ही ओएसटी लॻायो आहे मूं और निदली काफी दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आई थी और ओएसटी की फरमाइश कर दी. हम फरमाइश पूरी ना करें तो जरा मजा नहीं आता. सो ये निदली को डेडिकेट जाता है.

बाज़ुकात इंसान किसी दूसरे से इसलिए दूर नहीं होता कि वो उसे सजा दे या अपनी अहमियत का एहसास दिलाए, बल्कि इसलिए दूर होता है क्योंकि वो उसे और उसके फजूल रवैयों को एक सबक समझ चुका होता है। जब इंसान बार बार करीबी रिश्ते में तकलीफ पाता है, बेकदरी पाता है या मायूसी महसूस करता है, तो आखिरकार एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो खामोशी से खुद को पीछे हटा लेता है। ये दूरी इंतकाम नहीं होती बल्कि अपने दिल को सुकून देना होता है। कुछ करीबी लोग भी हमें ये सिखा देते हैं कि अब आपने तवक्कात इंतहाई कम रखनी है और ऐसे लोगों से फासला रखना है जो दिल को बार बार जख्मी करे। यानी बाज़ुकात दूरी किसी को बदलने के लिए नहीं बल्कि खुद को संभालने के लिए अख्तियार की जाती है।

क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। हाँ, कुछ गाने ऐसे होते हैं, चाहे आप ड्रामा देखें या ना देखें, लेकिन गाना हुआ आपको अच्छा लगता है। ये गाना भी उन गानों में से है। बहुत ही खूबसूरत सा ओएसटी हमने एंजॉय किया, और साथ ही साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया यूज करते रहिए, और अपने दोस्तों को जरा मशवरा दीजिए वो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहे। जयपाल भाई कहते कि भाऊ थोड़ा सॉन्ग सुनाया, थोड़ा थैंक्स, खुश रहे। पूरा गाना सुनना चाहते हैं तो 5 बजे वाले प्रोग्राम में फरमाइश किया करें। और हिदायतुल्लाह कहते हाय ये ड्रामा इतना अच्छा है, सच्ची बताएं। किशोर भाई कहते अदा मूं वटि कोई मसलो ना है, बाकी अगर मुखे खबर पई हितां को मसलो आ त पो सुठो न थींदो, आ रोड ते वेही रहंदस पो जेको थियो। हितां कीअं मसलो थी सघे थो, ॿियनि माण्हुनि जा कॉमेंट अचनि था, तव्हां सां ई मतिलब प्रॉब्लम हूंदो त इहो कीअं थो थी सघे। न अचनि त मतिलब सफ़ा न अचनि। वरी प्रोग्राम जो लास्ट में अचन कमेंट स्टार्ट थियन था, अलाए छा गाल है, गाल थोड़ी मतलब समझ में कौन पी अचे, मैं डिसी वेठा थी, प्रॉब्लम समझ में अची हो तो थोड़ो हल करे वेठूंगा, ठीक है।

विजयपाल भाई, वो बस ऐसे ही हवा में तीर मारा था मैंने। अच्छा जिब्रान, वैसे 2-3 सालों के बाद आप प्रोग्राम में आए हैं तो जाहिर सी बात है भाई, इंसान थोड़ा चेंज हो जाता है ना। वैसा मेरा वाकई मूड नहीं रहा जैसा मेरा पहले हुआ करता था, तो बहुत सारी जिंदगी में तब्दीलियां आ जाती है, इंसान थोड़ा मैच्योर हो जाता है, संजीदा भी हो जाता है। मेरा वही वाला फेज चल रहा है। अब मुझे लगता है कि मैं कुछ थोड़ा सा अच्छा सोबर प्रोग्राम कर लेती हूँ। पहले पता नहीं क्या करती थी,

शर्मा जी, अली मोहम्मद भाई आपको वेलकम करते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। किशोर भाई कहते हैं कि अदा अगर एक रूम में 100 लोग बैठे हैं, उनमें से 99 लोग हमारे खिलाफ हो और एक मेरे साथ, मैं उस एक पर तवज्जो देता हूँ, और ये बात रूम के लिए नहीं थी। आई नो किसके लिए जी। मैं भी दरअसल ऐसी हूँ। और ये आपकी बात आपको इसलिए सबसे अलग बनाती है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लगाएं, ठीक है, ताकि आप खूबसूरत भी हो जाए। मजीद खूबसूरत हो जाए। और कहते हैं कि आओ कमेंट कयान थो तो ऑप्शन अच्छे थो, तो फिलहाल हेते कमेंट न थो करे सकी। रियली यो मतलब लास्ट में मेरी ऑप्शन खुली बने थो, ये क्या जादू चल रहा है। अच्छा मोहम्मद अली भाई, आपको भी वेलकम हो गया आप हमारे साथ। इसी के साथ आप लोगों से जी इजाजत लेते हैं, क्योंकि हमारे जाने का वक्त आ चुका है। बड़ी तरह से मुलाकात पंच बजे वाले प्रोग्रामों में थी जी। नहीं नहीं जयपाल भाई, वो बस आपके लिए तो बिल्कुल नहीं था। अब्बास मेहर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और कहते हैं जयपाल भाई, अब नहीं नहीं कर सकते, मजाक मस्तियां किया करें, अच्छी बात है। पांजा पान में तो आयो। चले सोरी मिलूं था तुम्हारे साथ। पांजो इलाही सरो ख्याल रखना, किसी का गलती थी, मुझे तो माजरत कहूं था। सुमुकलानी ना ही बाबू, सिंह सलामत सास सलामत, पांजो ओ हिडो सरो ख्याल रख जो। सो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

बम धमाके में मुलविस समूरा दहशत गर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सेज इलाइक़े में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकमल करे वरतो। सिक्योरिटी ज़रिए मौजूद पुलिस लाइन में लिकियल बिना आपघाती बम्बारनि खे मारियो वियो आहे। कार्रवाई दौरान मजमूई तौर ते 8 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। कमांडोज ऐं बम डिस्पोज़ल स्क्वाड इलाइक़े खे क्लियर करार ॾेई छॾियो। ऑपरेशन जी निगरानी जनरल ऑफिसर कमांडेंट क्वाड कई। सिक्योरिटी फोर्सेज जूं बलोचिस्तान में कार्रवाइयूं। 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि चागीअ में फोर्सेज जी कार्रवाई दौरान 6 ऐं 5 गोर में 5 दहशतगर्दनि खे जहनम भेड़ो कयो वियो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी पारां फोर्सेज खे दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। एमकेएम सां वाॻियल वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल सूबनि जे क़याम बाबति कानून में तरमीम करण जो मुतालबो करे छॾियो। मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त असां इंतिज़ामी यूनिट जा हामी आहियूं। इंतिज़ामी यूनिट जे क़याम खे लीड कंदड़ असांजो हीरो हूंदो। गार गंद कंदड़ ॿुधी छॾिन। गारनि सां काफ़िला न आहिनि रुकबा। असां कंहिं बि क़ौम खे न आहे ॻाल्हायो। रुगो पीपल्स पार्टी जी ॻाल्हि कई आहे। करप्शन कंदड़ बुज़दिल हूंदो आहे। कॾहिं बि पंहिंजी जान न आहे ॾींदो। असां क़ुर्बानी ॾियण लाइ तयार आहियूं। ईरान सां जंग जल्द ख़तम थी वेंदी। जंग जे ख़ात्मे सां तेल बि सस्तो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त तहरान खे एटमी हथियारनि खां रोकण लाइ फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी हुई। ईरान ते बमबारी न कयूं हा त एटमी हथियार ठाहे वञा। सदर ट्रंप रूस ऐं ईरान ते पाबंदी मरण वारे बिलनि ते सहियूं बि करे छॾियूं। दुश्मन जे कंहिं बि ग़लतीअ जो ताक़त सां जवाब ॾियण लाइ 100% तयारु आहियूं। पासदारनि इनकलाब जे कमांडर मोहम्मद करमी चयो आहे त तहरान जारियत जो जवाब ॾियण जी भरपूर सलाहियत रखे थो। मुल्क दुश्मन अंसरनि खे मोह ॾियण लाइ 3,00,000 खां वधीक जानसरनि खे सरगर्म करे छॾियो आहे। ट्रंप CNN समेत मीडिया जे 3 इदारनि ते व्हाइट हाउस में दाख़िला ते पाबंदी लॻाए छॾी। पाबंदी हेठि आयल इदारनि में MS नाओ ऐं पॉलिटिको नाले ख़बरू इदारे बि शामिल। समाजी वेबसाइट ते जारी कयल बयान में सदर ट्रंप चयो आहे त 3 इदारा लगातार इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ कूड़ियूं ऐं ख़्याली ख़बरूं हलाए रहिया आहिनि।

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था। पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GFM 88 नेटवर्क।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पीए जे शहर कोहाट में दहशतगर्द हमले में मुलविस समूरा दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सिस इलाइक़े में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकमल करे वरतो। सिक्योरिटी ज़रियन मूजिब पुलिस लाइन में लिकल बिन आबगात बम्बारन के भी मारे वो है। कार्रवाई दौरान मजमू तौर से 8 दहशतगर्दन के मारे वो। कमांडोज ए बम डिस्पोजल स्क्वाड इलाके के क्लियर करार दई छो। ऑपरेशन की निगरानी जनरल ऑफिसर कमांडेंट कोहाट कई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट में थियल दहशतगर्द हमले में अफगान सरजमीन ए शहरों के मुलविस होने का इंकशाफ। कोहाट में दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी के मुलविस होने बाद अफगान तालिबान जो बिटो मयार बेनकाब। कोहाट में मस्जिद से आबगाती हमलों कंदा दहशतगर्द अफगानी शहरी निकतो मतीउल्लाह के नाले से सुणप थी वही। बई बे बम्बार की सुणप जो अमल जारी। अफगान आबगाती बम्बार की सुणप बाद साबित थी वो तो अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी ला इस्तेमाल थी रही है। एम के एम से वागियल वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल सूबन के क़याम बाबत कानून में तरमीम करण जो मुतालबो कर छो। मुस्तफ़ा कमाल असा इंतजामी यूनिट्स जहा हामी आयो। इंतजामी यूनिट्स के क़याम के लीड कंदड़ असो हीरो होंद। गार गंद कंदड़ बुधी छन। गारिन से काफिला ना रुकबा। अस कें बे कौम खिलाफ ना गल रुगो पीपुल्स पार्टी की गाल कई है। करप्शन कंदड़ बुजदिल होंद है। कदें भी पाँगी जान ना ीद। अस कुर्बानी दियण ला तैयार आयो। ईरान से जंग जल्द खत्म थी वेंदी। जंग के खात्मे से तेल भी सस्तो थी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तेहरान के एटमी हथियारों का रोकने लाए फौजी कार्रवाई जरूरी हुई। ईरान से बमबारी न कई आ तो एटमी हथियार ठाए वही। सदर ट्रंप रूस ए ईरान से पाबंदी मरण वाले बिलंस से सयू भी कर छद। दुश्मन के कें भी गलती जो ताकत से जवाब देने लाए 100% तैयार आयो। पासदार इनकलाब के कमांडर मोहम्मद करमी है तेहरान जारियत जवाब देण की भरपूर सलाहियत रखे तो। मुल्क दुश्मन अंसर के मोह दियण ला 3 लख का जानसर के सरगर्म कर छो है। सिक्योरिटी फोर्सिस जो बलूचिस्तान में कार्रवाई 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी जरियन मूजिब चागी में फोर्स की कार्रवाई दौरान 6 ए पंजगोर में 5 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी पारा फोर्सिस के दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से भेटा पेश। वडे वजीर सियाद मुराद अली शाह से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के वफद की मुलाकात। कराची हैदराबाद ए सखर एयरपोर्ट के रिथायन एविग्रेशन यूनिवर्सिटी के क्याम जो जायजो वरतो। वडे वजीर पारा पीए के जमीन की फरहमी ए तरक्याती मामलों की सहूलत देने की हिदायत। जडें इस्लामाबाद ला निकरंदासी त हर सूरत में पहुंचंदासी। पेट्रोल तां लेवी जे खात्मे ताईं लांग मार्च खत्म न कंदासी। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी जे अमीर हाफिज नईम चयो आए त हुकुमरान करप्शन ए फुरलुट खत्म करण ला तैयार न आहिन। IMF रुगो बहानो आहे ही अवाम खे रिलीफ ॾियण ला तैयार न आहिन। सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ कराची के सिटी कोर्ट में कराची बार जो आल सिंध लायर्स कन्वेंशन। आमिर नवाज वड़ाच अरशद शर हसीब जमाली समेत सिंध के मुख्तलिफ जिले बार जहदेदार शरीक। बदीन बार के वकील अगवान अमीर आजाद तो सिंध के मानन लाए सिंध जमीन जो टुकड़ो न पर संदन माव है। सिंध के मानन के जज्बन एहसासन से न खेडियो। वकील फिदा जामड़े चयो त सिंध जो विरांगो कें भी सूरत में कबूल न आए। विरांगे वारी साजिश में मुलविस मानू गद्दार होंदो। सिंध बार काउंसिल के सद ते सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ वकीलन जा मुख्तलिफ शहरन में मुजाहिरा। हैदराबाद खेरपुर ए रोहड़ी में अदालती कार्रवाई जो बाइकाट ए मुजाहिरा। वकीलन जो चवण है त सिंध जो विरांगो कें भी सूरत में कबूल न आए। साजिश कंदड़न के मात डिनी वेंदी। सिंध के मुख्तलिफ शहर में 2 जणा कतल 1 जणे जो लाश हथ। कतल जो शक जाहिर। चक वेझो कारें तकरार तां जतोई धुरन में जेड़ो 1 जणो कतल। औरत समेत 2 जणा जख्मी।
घर पांजा वारे इलाइक़े में पुराणे कारे तकरार सां जतोई बिरादरीअ जे ॿिनि धीरनि में जेड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में दो जतोई मारिजी वियो। टंडरो मोहम्मद खान में अदालती पेशीअ तां वापसी वेंदड़ नौजवान क़तल। करीमाबाद भरिसां हथियारबंदनि सामारो वासी अज़हर खोसो खे गोलियूं हणी क़तल कयो। टंडरो आदम वेझो कुकड़ियुनि जे फार्म ते कमु कंदड़ पोरियत मुराद ख़ास केली पुरसरार नमूने फोत थियो। फोतीअ जे भाउ चयो आहे त भाउ खे ज़हरीली शइ खाराए क़तल कयो वियो आहे।

जो एहतजाज आबाद करण बे ॾींहं बि मलकाणी शरीफ मेन बस स्टॉप ते एहतजाजी मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबाद करण पारां शाखनि जे पुछण ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो एहतजाज जारी रखण जो चिता। सखर में जे एस टी जा पासिंग मार्क 55 मां घटाए 50 करण लाइ उमेदवारनि जो एहतजाज। टेस्ट में 50 खां 54 मार्कूं खणंदड़ उमेदवारनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। उमेदवारनि चयो त टेस्ट में 5000 खां वधीक उमेदवारनि 50 खां 54 मार्कूं खयूं आहिनि, पासिंग मार्क्स 50 कई वञनि। ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में 3 ॼणा हयाती विञाए वेठा। चक भरिसां सखर शिकारपुर रोड ते हादसे में ठुलवासी धनार चनड़ उर्फ़ चन्नी बंगलाणी फोद टालर जे टकर में 2 रिढूं बि मरी वियूं। हैदराबाद जे इलाइक़े लतीफ़ाबाद में 2 मोटरसाइकिल जे टकर में कराची वासण पीरसन औरत फोत। बख्शापुर भरिसां इंडस हाईवे ते वेन जो टकर लॻण सबबि 8 वरनि जो नींगर मोहम्मद मुराद पुटु ॻाइणो हयाती विञाए वेठो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

सुनती हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: कोक स्टूडियो सीजन 14।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: 4:45 PM. This time check is brought to you by
1: Bank Islam Nilaya, Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
2: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है. अब जिम्मेदारी हम सब की है. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं. पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी.
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था. पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी.
5: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
6: कोक स्टूडियो सीजन 14.

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: Coke Studio, Season 14.

ये जे शहर कुआट में दहशतगर्द हमले में मुलविस समूरा दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाइक़े में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकमल करे वरतो। सिक्योरिटी ज़रिए मौजूद पुलिस लाइन में लिकल बिन आबगात बम्बारन के भी मारे वो है। कार्रवाई दौरान मजमूई तौर से 8 दहशतगर्दन के मारे वो। कमांडोज ए बम डिस्पोजल स्क्वाड इलाइक़े के क्लियर करार दई छो। ऑपरेशन की निगरानी जनरल ऑफिसर कमांडेंट कुआट कई। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुआट में थियल दहशतगर्द हमले में अफगान सरजमीन ए शहरन के मुलविस होजन जो इंकशाफ। कुआट में दहशतगर्द हमले में अफगान शहरी के मुलविस होजन बाद अफगान तालिबान जो बिटो मयार बेनकाब। कुआट में मस्जिद ते आपघाती हमलों कंदा दहशतगर्द अफगानी शहरी निकतो मतीउल्लाह के नाले से सुणप थी वही। बई बे बम्बार की सुणप जो अमल जारी। अफगान आपघाती बम्बार की सुणप बाद साबित थी वो अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी ला इस्तेमाल थी रही है। एम के एम सा वागियल वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल सूबे के क़याम बाबत कानून में तरमीम करण जो मुतालबो कर छो। मुस्तफ़ा कमाल असा इंतजामी यूनिट्स जहा हामी आयो। इंतजामी यूनिट्स के क़याम के लीड कंदड़ असो हीरो हों। गार गंद कंदड़ बुधी छन गारिन से काफिला ना रुकबा। अस कें बे कौम खिलाफ ना गल रुगो पीपुल्स पार्टी की गाल कई है। करप्शन कंदड़ बुजदिल हों कदें भी पाँगी जान ना ीद असा कुर्बानी दियण ला तैयार आयो। ईरान से जंग जल्द खत्म थी वेंदी। जंग के खात्मे से तेल भी सस्तो थी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आए ता तेहरान के एटमी हथियारन का रोकने लाए फौजी कार्रवाई जरूरी हुई। ईरान ते बमबारी न कई आ एटमी हथियार ठाए वन। सदर ट्रंप रूस ए ईरान ते पाबंदी मरण वाले बिलंस से सयू भी कर छो। दुश्मन के कें भी गलती जो ताकत से जवाब देने लाए 100% तैयार आयो। पासदार इनकलाब के कमांडर मोहम्मद करमी है तेहरान जारियत जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखे तो। मुल्क दुश्मन अंसर के मोह देने लाए 3 लख का जानसर के सरगर्म कर छो है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो बलोचिस्तान में कार्रवाई 11 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रिए मूजिब चागी में फोर्सेस की कार्रवाई दौरान 6 ए पंजगोर में 5 दहशतगर्दन के जहन्नम भेड़ो कयो वयो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी पारां फोर्सेस के दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई ते भेटा पेश। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के वफद की मुलाकात। कराची हैदराबाद ए सखर एयरपोर्ट के रिथायन एविग्रेशन यूनिवर्सिटी के क्याम जो जायजो वरतो। वडे वजीर पारा पीए के जमीन की फरहमी ए तरक्याती मामलों की सहूलत देने की हिदायत। जडें इस्लामाबाद लाए निकरंदासीं त हर सूरत में पहुंचंदासीं। पेट्रोल तां लेवी के खात्मे ताईं लांग मार्च खत्म न कंदासीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम चयो आए त हुक्मरान करप्शन ए फुरलुट खत्म करण लाइ तैयार न आहिनि। IMF रुगो बहानो आहे ही अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तैयार न आहिनि। सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ कराची के सिटी कोर्ट में कराची बार जो आल सिंध लायर्स कन्वेंशन। आमिर नवाज वड़ाच अरशद शर हसीब जमाली समेत सिंध के मुख्तलिफ जिले बार जहा अहदेदार शरीक। बदीन बार के वकील अगवान अमीर आजाद चाहिए सिंध के मानों लाए सिंध जमीन जो टुकड़ो न पर संदन माव आए। सिंध के मान के जज्बन एहसासन से न खेड। वकील फिदा जामड़े चयो त सिंध जो विरांगो कें भी सूरत में कबूल न आए। विरांगे वारी साजिश में मुलविस मानू गद्दार हों। सिंध बार काउंसिल के सद ते सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ वकीलन जा मुख्तलिफ शहरन में मुजाहिरा। हैदराबाद खेरपुर ए रोहड़ी में अदालती कार्रवाई जो बाइकाट ए मुजाहिरा। वकीलन जो चवण है त सिंध जो विरांगो कें भी सूरत में कबूल न आए। साजिश कंदड़न के मात डिनी वेंदी। सिंध के मुख्तलिफ शहर में बजणा कतल एक जणे जो लाश हथ कतल जो शक जाहिर। चक वेझो कारें तकरार तां जतोई धुरन में जेड़ो एक जणो कतल औरत समेत बजणा जख्मी।
घर पांजा वारे इलाइक़े में पुराणे कारें तकरार तां जतोई बिरादरीअ जे ॿिनि धुरियुनि में जेड़ो थियो। फायरिंग जे नतीजे में दो जतोई मारिजी वियो। टंडरो मोहम्मद खान में अदालती पेशीअ तां वापसी वेंदड़ नौजवान क़तल। करीमाबाद भरिसां हथियारबंदनि सामारो वासी अज़हर खोसो खे गोलियूं हणी क़तल कयो। टंडरो आदम वेझो कुकड़ियुनि जे फार्म ते कमु कंदड़ पोरियत मुराद ख़ासि केली पुरसरार नमूने फोत थियो। फोतीअ जे भाउ चयो आहे त भाउ खे ज़हरीली शइ खाराए क़तल कयो वियो आहे।

जो एहतजाज आबाद करण बे डी भी मलकानी शरीफ मेन बस स्टॉप ते एहतजाजी मुजाहरो करे धरणो आयो आबाद करण पारा शाखन जे पुछण ताई पानी पहुंचाण जो मुतालबो एहतजाज जारी रखण जो चिता सखर में जीएसटी जा पासिंग मार्क 55 मां घटाए 50 करण लाइ उम्मीदवारनि जो एहतजाज टेस्ट में 50 खां 54 मार्कूं खणंदड़ उम्मीदवारनि पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो उम्मीदवारनि चयो त टेस्ट में 5000 खां वधीक उम्मीदवारनि 50 खां 54 मार्कूं खयूं आहिनि पासिंग मार्क्स 50 कई वञनि ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रोड हादसनि जे नतीजे में 3 ॼणा हयाती विञाए वेठा चक भरिसां सखर शिकारपुर रोड ते हादसे में ठुलवासी धनार चनड़ उर्फ़ चन्नी बंगलाणी फोद टालर जे टकर में 2 रिढूं बि मरी वियूं हैदराबाद जे इलाइक़े लतीफ़ाबाद में 2 मोटरसाइकिल जे टकर में कराची वासण पीरसन औरत फोत बख्शापुर भरिसां इंडस हाईवे ते वेन जो टकर लॻण सबबि 8 वरनि जो नींगर मोहम्मद मुराद पुटु ॻाइणो हयाती विञाए वेठो

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: हर माशूम वरकोटी वरकोटी का दमुना दयो नवी दुनिया पलोर रवानवी खुदा पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पमहाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकूलो जवाब वरकवई अखपल माशुमानुता द पोलियो द मखनिवी दो सास की वरकवल महेरवई जकच हुम दा सास की द माशुमानु द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरिमुमी पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: कोक स्टूडियो सीजन 14।

0: ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੱਚਣਾ
1: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: Coke Studio, Season 14.

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ॾाढो सुठो
2: जी ए एफ एम 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: और उसी का इंतजार कर रही हूँ।
1: थैंक गॉड शी इज हियर। सिस्टर मैं आपका 2 घंटे से इंतजार कर रही हूँ। ओके जान आई एम ऑफ नाउ एंड आई विल सेंड यू सम फूड। सिस्टर इनका ख्याल रखिएगा। हाँ आई एम जस्ट कमिंग।
2: आपकी ड्रिप चेंज होने वाली है, मेडिसिंस लिया आपने?
3: जी कल रात से पड़ी।
4: पहचो शहर पहचो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
5: GFM 90.8।

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: भारतीय सरपरस्ती में अफगान सरजमीन खातींदड़ दहशतगर्दी रोकण तालिबान रिजीम की जिम्मेवारी है। जैसे तालिबान रिजीम दोहा मुआदे तहत कल वायदन से अमलदार न किया पाकिस्तान के पांजे दफा जो मुकम्मल हक हासिल है। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो अरब न्यूज़ के इंटरव्यू। डीजी ISPR 80% अफगाती बम्बार अफगानी हैं। दहशतगर्द बंदूक की नोक से पांजो नजरियो मरण की कोशिश कर रहा है। रियासती पॉलिसी वाजे है तो दहशतगर्दन से का भी गाल बोल न थी। पाक फौज तर्जुमान पाकिस्तान अमली तौर सऊदी अरब की मदद लाए मौजूद है। सफारती लिहाज का भी सऊदी अरब से गड बीठो है। पाकिस्तान सऊदी क्यादत की जरूरत मूजब हरमैन शरीफ ने सऊदी अरब की हिफाजत लाए कें भी हद ते वन लाए मुकम्मल तौर तैयार है। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची से फोन से राबतो। खिते की सूरत हाल से ख्याल की डेवट इसहाक डार है तो खिते में अमुन इस्तेकाम लाए गालियों ए सफारतकारी वायद असरायतो रस्तो है। बिन्ही अगवाणन जो वेझा लागापा जारी रखना है। गडल कौम के इजलास के मौके से मुलाकात से इतफाक।
4: जो भी ये आपको ये बता रहा है कि कराची में अगर ये सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने सूबे बने तो यहां पर कत्लो गारत गरी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, बिल्कुल नाजायज बात कर रहे हैं। ये वो MQM नहीं है, ये MQM रिफॉर्म हो गई है। हाँ, इस शहर में हथियार हुआ करते थे, इस शहर ने हथियार रख दिया है। इस कौम के लोगों ने, इस पार्टी के लोगों ने खुद से अपनी इनर करेक्शन की है। ये वाहिद पार्टी है जिसने अपना लीडर ही फारिग कर दिया इस काम के करने पे। है कोई कैटेगोरिकली मैं तमाम अपने सिंधी भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को ये कहना चाहता हूं कि आपको ये गलत बात बताई समझाई जा रही है, आपकी इज्जत जान माल पहले से ज्यादा महफूज होंगे। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो 18वीं तरमीम है इसने 4 सूबों का अख्तियार नहीं दिए बल्कि 4 मुल्क बना दिए और सिंध को तो बिल्कुल ही आजाद कर दिया। और ये आजादी का ऐलान क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको हर साल पाकिस्तान के खजाने से 2500 अरब रुपए मिलते हैं।
3: सिंध में नव सूबो ठहण से कारा तो छण नी। कराची में रहदड़ सिंधी वधिक महफूज बणजी वा। मुस्तफ़ा कमाल जी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल चो तो नवन सूबन यूनिट्स के हवाले से सिंधी भारन ए भेनरुन के डिजारो पे वे तो उन रत छण थी। सिंधी असाज वजूद जो हिस्सों आन असा तो सिंधी बुजुर्ग के कदम की खाक आयो। नफरत किए था कर सकूँ हिवा MQM ना है। ये MQM सुधरी वही है। इन शहर हथियार रखी छो है। इन पार्टी अंदरूनी सुधारो आंदो है। हि वाहिद पार्टी है जैं पांजे लीडर के फारिग कयो है। अणी तरमीम 4 सूबन के अख्तियार न डना पर 4 मुल्क ठाए छड़ा। सिंध के बिल्कुल आज़ाद कर छो। सिंध जहा हुकुमरान आज़ादी जो ऐलान उन करे नथा कन जो हुनन के हर साल पाकिस्तानी खजाने में 2500 अरब रुपया मिलन था। पीपी ते असाजी तनकीद के सिंधन ते तनकीद न समझो वही छाकाण त सब सिंधी पीपल्स पार्टी में ना आहिनि।

मरियम नवाज चवे थी त पंजाब के केपी सिंध ऐं बलूचिस्तान खां खतरो आहे। अंदाज़ो लॻायो त हुकुमराननि जो कहिड़ी शइ ते ध्यानु आहे। फाटा खे केपी में ज़िम करण बाद अॼु ताईं पैसनि जो बंदोबस्तु न कयो वियो आहे। ॿुधायो त 40 सूबा ठाहे कहिड़ा तीर हलाईंदो? अलामा राजा नासिर अब्बास, मोहम्मद ज़ुबैर ऐं ॿियनि अॻुवाणनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलामा राजा नासिर अब्बास चयो त मौजूदा हुकुमराननि खे अवाम मञे ई नथो, फौरी तौर मुल्क में नयूं चूंडूं करायूं वञनि। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इतिहाद जे सदर मलिक शहज़ाद ऐवान चयो आहे त इस्लामाबाद ऐं पंजाब पुलिस पारां 1000 गाॾियूं ऐं कंटेनर ज़ब्त करण जी मज़म्मत कंदे चयो आहे त सियासी जमायतुनि जो एहतजाज रोकण लाइ गाॾियूं ऐं कंटेनर रोकिया विया आहिनि। दवाऊं ऐं ॿियूं शयूं ख़राबु थियण जो ख़तरो आहे। गाॾियुनि ऐं माल खे नुक़सान पतो त ज़िमेवार वफ़ाक़ी सरकार ऐं पंजाब हुकूमत हूंदी। असांजूं गाॾियूं ऐं कंटेनर एहतजाज रोकण लाइ न पर मुल्की मैशत ऐं अवाम जूं घुर्जूं पूरियूं करण लाइ आहिनि। पकड़ियल गाॾियूं ऐं कंटेनर फौरी तौर छॾिया वञनि, ॿी सूरत में हिकमत अमली जो ऐलान कंदासीं। कराची बार जे सॾ ते सिटी कोर्ट में मुतहद सिंध मज़बूत पाकिस्तान जे उनवान सां आल सिंध लायर्स कन्वेंशन। कन्वेंशन में समूरी सिंध जे बार काउंसलर्स जा उहिदेदार शरीक, आमिर नवाज़ वड़ाइच, अरशद शर, हसीब जमाली ऐं ॿिया अॻवाण बि शरीक। कन्वेंशन शुरू थियण खां अॻु सदाम सिंध मुरके पई गीत ॻाए सभिनी खे झुमाए छॾियो। वकीलनि जूं झुमरियूं सिंध जे इम्कानी विरहाङे नवनि किनालनि 26 ऐं 27 तरमीमुनि ख़िलाफ़ सिंध बार काउंसिल जे सॾ ते सॼे सूबे में अदालती कार्रवाइनि जो बहकाट। वकील अॻवाणनि चयो आहे त सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। क्वाड पुलिस अलायंस में आपघाती धमाको, शहीदनि जो अंगु वधी 23 थी वियो। 103 ॼणा ज़ख़्मी, शहीदनि में 17 पुलिस अहलकार ऐं 6 शहरी शामिल। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ऑपरेशन मुकमिल कयो वियो। ॿिनि आपघाती बम्बारनि समेत समूरा 8 दहशतगर्द मारिया विया। गुज़िरियल ॾींहुं जुमे जी निमाज़ दौरान आपघाती धमाको थियो हो। गॾियल क़ौमुनि जे सेक्रेटरी जनरल पारां आपघाती धमाके जी मज़म्मत, एंटोनियो गुतरेस चयो आहे त शहरनि ऐं इबादतगाहुनि खे निशानो बणाइण वारा हमिलो क़बूल करण जोॻा न आहिनि। सऊदी अरब, तुर्किया, ईरान, कतर, बहरेन ऐं उर्दन पारां बे कोहाट आपघाती धमाके जी मज़म्मत। केपी जे वरी वज़ीर सोहेल आफरीदी चयो आहे त खैबर पख़्तूनख्वा 2004 खां अॼु ताईं 22 सालनि खां मुसलसल दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग विढ़ी रहियो आहे। 22 सालनि खां हिकु ई पॉलिसी ते अमल थी रहियो आहे, पर नतीजा न पिया मिलनि। हाणे पॉलिसी तब्दील करण जो वक़्तु अची वियो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत जो ध्यानु रुॻो PTI खे ख़तमु करण ते आहे। वॾे वज़ीर सोहेल आफरीदी कोहाट पहुची धमाके में शहीद थी वियलनि जे वारसनि सां ताज़त ऐं ज़ख़्मी जी अयादत बि कई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस जूं कार्रवाइयूं 11 दहशतगर्द मारिया विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिबि ऑपरेशन रदुल फितना टे तहत पंजगोर ऐं चागी में कार्रवाइयूं कयूं वयूं। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां वॾे मक़दार में हथियार ऐं बारूदी मवाद थिए। कराची जे गाज़ी ॻोठ में CTD ऐं वफ़ाक़ी इदारे जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग जी ॾेवठ दौरान अलंदिस्तान सां तालुक रखंदड़ 2 दहशतगर्द मारिजी विया। CTD तर्जुमान मूजिबि मारिजी वियल दहशतगर्द कराची में कार्रवाइनि जे मनसूबाबंदी में मसरूफ़ हुआ। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां हिकु कलाशनकोफ ऐं 9 mm पिस्टल ऐं हिकु मोटरसाइकिल हथे। पेट्रोल 1.65 रुपयो ऐं डीज़ल 88 पैसा फी लीटर सस्तो। पेट्रोल जी फी लीटर क़ीमत 379.14 रुपया थी वई। डीज़ल जी क़ीमत 424.04 रुपया फी लीटर मुक़रर। शहरनि पेट्रोल ऐं डीज़ल जी क़ीमतुनि में मामूली लात खे रद्द करे छॾियो। पेट्रोलियम लेवी ख़तमु करण जो मुतालबो। पेट्रोल रिलीफ स्कीम तहत हाणे 5 लीटर खां घटि पेट्रोल ते बि रियायत मिलंदी। वज़ीर आज़म आफ़ीस मूजिबि 5 लीटर खां घटि पेट्रोल विझराईंदड़ मोटरसाइकिल मालिकनि खे हिकु टोकन ते हिकु हफ़्ते में 500 रुपया रियायत मिलंदी। हफ़्ते में हिकु टोकन ऐं महीने में 4 टोकन जारी कया वेंदा। वज़ीर आज़म आफ़ीस मूजिबि 800 cc
गाॾियुनि जा मालिक हर ॾह ॾींहनि में 10 लीटर पेट्रोल ते 100 रुपया फी लीटर रियायत हासिल कंदा। हिकु महीने में 10 लीटर जा 3 टोकन जारी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। पेट्रोलियम लेवी ख़िलाफ़ु सुभाणे कराची खां मार्च शुरू कंदासीं। हुकूमत कंहिं बि एडवांचर खां पासो करे असां वटि सभु ऑप्शन मौजूदु आहिनि। हाफिज़ नईम जी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज़ नईम चयो त हुकुमरान हफ़्ते में 500 रुपया ख़ैरात ॾेई सम्झनि था त आवाम जो हक़ु खाई वेंदा। पेट्रोलियम लेवी ख़तमु करण जो ऐलान थियण ताईं हाणे हुकूमत सां ॻाल्हियूं न कंदासीं। पीटीआई जे मार्च जे प्लान जी असांखे ख़बर नाहे। सदर ट्रंप रूस ते वसी पैमाने जूं पाबंदियूं लॻाइण ऐं ईरान ते लॻियल पाबंदियुनि में वाद वारे कानून ते सही करे छॾी। अमरीका जे ईवान नुमाइंदगान हलंदड़ हफ़्ते जे शुरूआति में रूस ऐं ईरान ते पाबंदियुनि वारे बिल जी मंज़ूरी ॾिनी हुई। ट्रंप चयो आहे त ईरान सां जंग जल्द ख़तमु थी वेंदी। जंग जे ख़ात्मे खां पोइ पेट्रोल जा अघ बि घटिजी वेंदा। तेहरान खे एटमी हथियार हासिलु करण खां रोकण लाइ फ़ौजी कार्रवाई ज़रूरी हुई। मूं वटि ॿियो को बि दग न हो। ट्रंप CNN MS नाओ ऐं पॉलिटिकल नाले टिन्ही सहाफ़ती इदारनि जे नुमाइंदनि ते वाइट हाउस में दाख़िला ते पाबंदी लॻाए छॾी। ट्रंप चयो आहे त टई इदारा कूड़ियूं ख़बरूं हलाए रहिया आहिनि। CNN पाबंदी खे अमरीकी आईन में ॾिनल आज़ादु सहाफ़ ते गैरक़ानूनी हमिलो करार ॾींदे चयो त हुकूमत खे रिपोर्टिंग में रुकावट विझण जो हक़ु न आहे। ईरान दुश्मन धुरनि खां मुल्क खे दरपेश ख़तरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ 3,13,000 जानिसार रज़ाकार तयारु करे वरिता। तेहरान में इमाम हुसैन स्क्वायर खां इनकलाब चौक ताईं जान फिदा मुहिम जे उनवान सां हज़ारे जानिसारनि जी रैली कढी वई। रैली में जंगी बटालियन्स ऐं मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हुनि ऐं रज़ाकारनि जी शिरकत। ईरान लाइ जान क़ुर्बान करण जो अज़म। ईरानी अख़्तरनि जो चवणु आहे त जान फिदा मुहिम जो मक़सदु ईरान जी अवामी ताक़त जो मुज़ाहिरो ऐं मज़ाहमत खे वधीक मज़बूत बणाइणु आहे। जान फिदा मुहिम दुनिया जे जंगी तारीख़ जी सभ खां वॾी अवामी मुहिम आहे। अमरीका खिते मां ख़्वार थी निकिरंदो।

फंक्शनल लीग कराची डिवीज़न पारां ॿारनि जे अॻुवा ॾाढाई ऐं क़तल जे वाक़िअनि ख़िलाफ़ु आचर ते कराची में एहतजाज जुलान। सरदार अब्दुल रहीम चयो आहे त आचर ॾींहुं 20 सेप्टेम्बर ते कलेक्टर टे तलवार वटि पुरमन एहतजाज कयो वेंदो। शहरी भरपूर शिरकत कनि। कराची में ॿार ॿाड़ियूं ऐं औरतूं महफ़ूज़ न आहिनि। सरजानी टाउन में औरत जे टिनि ॿारनि सूधो क़तल जहिड़ा वाक़िया ॻणती जोॻा आहिनि। ॿारनि जे अॻुवा क़तल ऐं ज़्यादती जे वाक़िअनि में मुलस जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे वारसनि सां इंसाफ़ कयो वञे। जुडिशियल मजिस्ट्रेट डगणी जी अदालत में मंचात ऐं हथियार केस जी ॿुधणी दौरान अनमोल पिंकी ऐं ॿियनि खे पेश न कयो वियो। अदालत ईंदड़ ॿुधणी ते जवाबदारनि खे पेश करण लाइ प्रोडक्शन आर्डर जारी करे छॾिया। ॿुधणी 1 अक्टूबर ताईं मुलतवी कई वई। अदालत चालान में दरपेश रूप उस जवाबदारनि खे इश्तिहारी करार ॾियण जी कार्रवाई शुरू करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अनमोल उर्फ पिंकी ऐं ॿियनि जवाबदारनि ख़िलाफ़ु गार्डन थाणे ते मंशात ऐं हथियार हथ अचण जा केस दाख़िल थियल आहिनि। एक्साइज़ खाते में ASI जे सिधनि भर्तियुनि ख़िलाफ़ु सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल। धुरनि खे नोटिस जारी। कांस्टेबल आरिफ ऐं ॿियनि जी दरख़्वास्त ते चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एक्साइज़ ऐं ॿियनि खे 1 अक्टूबर में जवाबु ॾियण जो हुकुम। दरख़्वास्त गुज़ारनि जे वकील चयो त दरख़्वास्त गुज़ार 35 सालनि खां कांस्टेबल तौरु कमु करे रहिया आहिनि। खेने प्रोमोशन न ॾिनो वियो। कांस्टेबल्स खे प्रोमोशन ॾियण बदिरां जमादार जी पोस्ट अपग्रेड करे ASI पोस्ट बणाई वई। एक्साइज़ खाते में भर्तियुनि जो तरीक़ो तब्दील करे ASI जी सिधी रीति भर्तियुनि जा इश्तिहार जारी कया विया। कानून मूजिबि एक्साइज़ खाते में सिधियूं भर्तियूं करे नथियूं सघजनि। टंडो मोहम्मद ख़ान में पसंद जी शादी कंदड़ नौजवान क़तल। करीमाबाद वेझो मातली रोड ते जवाबदारनि गोलियूं हणी नौजवान अज़हर खोसो खे क़तलु कयो। लाश इस्पताल मुंतकिल। पुलिस जो चवणु आहे त नौजवान टंडो मोहम्मद ख़ान जे कोर्ट में ॿुधणी ते आयल हो। वापसि वेंदे खेसि क़तलु कयो वियो। जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार कयो वेंदो। रुस्तम भरिसां नौजवान क़तलु ॻोठु जामी कुबे में। जवाबदार गोलियूं हणी नौजवान दोदो कादराणी जतोई खे क़तलु करण बाद फरार थी विया। पुलिस जो चवणु आहे त सोटनि में झेड़ो हलंदड़ हो। कुझु अर्सो अॻु नौजवान राशिद कादराणी जतोई खे क़तलु कयो वियो हो। पलांद में अॼु नौजवान दोदो कादराणी जतोई खे क़तलु कयो वियो। वधीक जांच कई पई वञे। वाक़िए जो न केस दाख़िल थियो, न ई जवाबदार गिरफ़्तार थी सघिया।

ऐं कंदकोट भरिसां पीउ खे क़तलु कंदड़ जवाबदारु पुटु गिरफ़्तार ॾोहु मञी वरितो। हिकु ॾींहुं अॻु ॻोठ मज़ारी भंगवार में जवाबदार अब्दुल इलाह भंगवार पीउ हयात भंगवार खे पिस्टल जा फायर करे क़तलु कयो हो। जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। जवाबदार उस जो इतराफ़ कंदे चयो आहे त पीउ खां मिल्कियत मां हिसो घुरियो, इनकार करण बाद पिस्टल जा फायर करे खेसि क़तलु कयो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: अस्सलाम वालेकुम, रोकड़ी प्रोडक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल

शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
1: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
3: खूबसूरतीअ जो असल सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: अजरक के रंगों से रंगी
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
4: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अफगान सरजमीन तां भारतीय सरपरस्ती में थींदड़ दहशतगर्दी के रोकण अफगान तालिबान की जिम्मेवारी है। रियासती पॉलिसी बिल्कुल वाज़े है तो दहशतगर्दन से गालियों न थींदियूं। अरब टीवी के दिनल इंटरव्यू में पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी जो चवण हो तो पाकिस्तान में थींदड़ अपघाती हमलन में 80% अफगान शहरी मुलविस हैं। अफगानिस्तान का पाकिस्तान में दाखिल थींदड़ दहशतगर्दन में अफगानी भी शामिल हुंदा आहिन। बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी के भी अवामी हिमायत हासिल ना है। बलोचिस्तान में दहशतगर्द पंजे नजरिए के बंदूक के जोर से मरण की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान हरमैन शरफेन सऊदी अरब की हिफाजत लाए कें भी हद तई वन तैयार है। सफारती सतह से भी सऊदी अरब से गड बीठल आयु। पाकिस्तान अमली तौर से भी सऊदी अरब की मदद ला मौजूद है। सऊदी अरब की सलामती ला असो अजम गैर मशरूत है। कें भी जारियत खिलाफ सऊदी अरब को दिफा कर तैयार आयु। खैबर पख्तूनख्वा के शहर कुहाट में दहशतगर्द हमले में मुलविस समूरा दहशतगर्द मारजी वया। फोर्सेज इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर वरतो। सिक्योरिटी जरिए मूजिब पुलिस लाइन में लिखल बिन आपघाती बम्बारन के भी मारो वो। कार्रवाई दौरान मजमूई तौर से 8 दहशतगर्दन के मारो वो। मारजी वेल एक आपघाती बम्बार की सुणप अफगान शहरी मतियुल्ला के नाले से थी है। बम्बार की सुणप जो अमल जारी। अफगानिस्तान में तालिबान पारा दहशतगर्दन की सहूलतकारी भी बेनकाब थी वही। ईरान से जंग जल्द खत्म थी वेंदी। जंग की खात्मे से तेल भी सस्तो थी वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तहरान के एटमी हथियार का रोकण लाए फौजी कार्रवाई जरूरी हुई। ईरान से बम्बारी न क्यों हा तो एटमी हथियार ठाहे वे हा। सदर ट्रंप रूस ईरान से पाबंदियों मरण वारन बिल्स से सयूं भी कर छ्यूं। नायब वजीर आजम इसहाक डार जो ईरानी परदेही वजीर अब्बास इराकची से फोन से राबतो। इसहाक डार अब्बास इराकची खिते की सूरत हाल ए बेतरफन लागापन से गालू क्यों। परदेही खाते मूजिब इन्हीं अगवाणन खिते की तब्दील थींदड़ सूरत हाल से भी ख्याल की डेवट कई। राबते दौरान तवानाई वारा रस्ता महफूज बनाने से भी गालू क्यों व्यू। गडियल कौमन के इजलास दौरान मुलाकात करण से भी इतफाक। इसहाक डार तकरार जो गाल जरिए ही हल कढ़ी सकजे तो। वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी की सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा नासिर अब्बास से मुलाकात मुख्तलिफ मामलन ते गालियों। अलामा नासिर अब्बास है तो मुलाकात में का भी गुझी एजेंडा न हुई। बानी के इलाज वारो मामलो है। एहतजाज जमहूरी आइनी हक है। रोकण वारो अमल मुनासिब ना है। सिक्योरिटी फोर्सेस जूं बलोचिस्तान में कार्रवाइयों 11 दहशतगर्द मारजी वया। सिक्योरिटी जरिए मूजिब चागी में फोर्सेस की कार्रवाई दौरान 6 और 5 गोर में 5 दहशतगर्दन के मारे वयो। वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी पारा फोर्सेस के दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से भेटा पेश। वडे वजीर सैयद मुराद अली शाह से पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के वफद की मुलाकात। कराची हैदराबाद ए सखर एयरपोर्ट की रिथान एविएशन यूनिवर्सिटी की क्याम जो जायजो वरतो वो। वडे वजीर पारा पीए के जमीन की फरहमी ए तरक्याती मामलन की सहूलत देने की हिदायत। वफाकी हुकूमत एक टोकन से 5 लीटर पेट्रोल वठण वारो शर्त खत्म कर छो। वफाकी वजीर शिजा फातिमा है तो वजीर आजम फ्यूल स्कीम सब्सिडी में 3 तब्दीलू क्यों हैं। एक टोकन से 5 लीटर वे हद के खत्म किया वो है। स्कीम तहत फी लीटर पेट्रोल 100 रुपया सस्तो फराम किया पे वे।

जॾहिं इस्लामाबाद लाइ निकरंदासीं त हर सूरत में पहुचंदासीं, पेट्रोल तां लेवीअ जी ख़ात्मे ताईं लॉन्ग मार्च ख़तमु न कंदासीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमात इस्लामीअ जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त हुकुमरान करप्शन ऐं फुरलुट ख़तमु करण लाइ तयारु न आहिनि। IMF रुगो बहानो आहे, हीअ अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयारु न आहिनि।

एम क्यू एम सां वागियल वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल सूबनि जी क़याम बाबति कानून में तरमीम करण जो मुतालबो करे छॾियो। मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त असां इंतज़ामी यूनिट्स जा हामी आहियूं, इंतज़ामी यूनिट्स जी क़याम खे लीड कंदड़ असांजो हीरो हूंदो। गार गंद कंदड़ ॿुधी छॾनि, गारनि सां काफ़िला नाहिनि रुकबा। असां कंहिं बि क़ौम ख़िलाफ़ नाहे ॻाल्हायो, रुगो पीपुल्स पार्टीअ जी ॻाल्हि कई आहे। करप्शन कंदड़ बुज़दिल हूंदो आहे, कॾहिं बि पंहिंजी जान नाहे ॾींदो। असां क़ुर्बानीूं ॾियण लाइ तयारु आहियूं।

सिंध जे इम्कानी विरहांगे खिलाफ़ कराची जी सिटी कोर्ट में कराची बार जो ऑल सिंध लायर्स कन्वेंशन। आमिर नवाज वड़ाइच, अरशद शहर, हसीब जमाली समेत सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िले बार्स जा उहिदेदार शरीक। बदीन बार जे वकील अगवान अमीर आज़ाद जो चवण हो त सिंध जे माण्हुनि लाइ ज़मीन जो टुकड़ो न पर संदन माउ आहे। सिंध जे माण्हुनि जी जज़्बनि ऐं अहसासनि सां न खेॾो। वकील फिदा हुसैन जामड़ो चयो त सिंध जो विरहाङो कंहिं बि सूरत में क़बूल नाहे। विरहाङे वारी साज़िश में मुलविस माण्हू गदार हूंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सगे थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पियारियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पहजो शहर पहजो घर सकरण आई सकरण जो आवाज
3: GFM 90.8।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
2: हर दिन हर पहर ज़िंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: साची बाल सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ धरती मार्च जो फ़ैसिलो करे वरितो। कन्वेंशन खे ख़िताब कंदे आमिर नवाज़ वाड़ा चयो त सिंध ख़िलाफ़ थींदड़ साज़िश मुल्क खे कमज़ोर कंदी। सिंध हाई कोर्ट बार जे सदर हसीब जमाली चयो त सिंधुअ जो पाणी पीअंदड़ सिंध जो विरहाङो बर्दाश्त न कंदो। के बी लिगारी, अरशद शेर, इश्तियाक मेमण, हफीस लाशारी, फरीदा मंगरियो, अमीर आज़ाद ऐं ॿियनि चयो त सिंधवासी सिंध ख़िलाफ़ कंहिं बि साज़िश खे कामयाब थियणु न ॾींदा। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सां पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी जे वफ़द जी मुलाक़ात। कराची, हैदराबाद ऐं सखर एयरपोर्ट जे रिथाइन ऐं एविएशन यूनिवर्सिटी जे क़याम जो जाइज़ो वरितो वियो। वॾे वज़ीर पारां PAA खे ज़मीन जी फरहमी ऐं तरक़ियाती मामलनि जी सहूलियत ॾियण जी हिदायत। वफ़ाक़ी हुकूमत हिकु टोकन ते 5 लीटर पेट्रोल वठण वारो शर्त ख़तमु करे छॾियो। वफ़ाक़ी वज़ीर शहज़ाद फातिमा चयो त वज़ीर आज़म फ्यूल स्कीम सब्सिडीअ में 3 तब्दीलियूं कयूं आहिनि। हिकु टोकन ते 5 लीटर वारे हद खे ख़तमु कयो वियो आहे। स्कीम तहत फी लीटर पेट्रोल 100 रुपया सस्तो फराहम कयो पियो वञे। जॾहिं इस्लामाबाद लाइ निकिरंदासीं त हर सूरत में पहुचंदासीं। पेट्रोल तां लेवीअ जी ख़ात्मे ताईं लॉन्ग मार्च ख़तमु न कंदासीं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम चयो त हुकुमरान करप्शन ऐं फ्रॉड ख़तमु करण लाइ तयारु न आहिनि। IMF रुगो बहानो आहे, हीअ अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयारु न आहिनि। कंदकोट वेझो हथियारबंदनि फायरिंग करे STP कारकुन खे क़तल करे छॾियो। वाके ख़िलाफ़ वारसन ऐं STP जो इंडस हाईवे ते लाश रखी धरणो। ॻोठु मुख़्तियार सोराणी में हथियारबंदनि गोलियूं हणी नौजवान सनाउला सब्ज़ूअ खे क़तल कयो। वाके खां पोइ वारसन ऐं STP कारकुननि लाश इंडस हाईवे ते रखी धरणो हयो। वारसन चयो त नौजवान खे सब्ज़ूई बिरादरी जे माण्हुनि क़तल कयो आहे, जवाबदार गिरफ़्तार कया वञनि। कराची जे इलाइक़े मंगोपीर में ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने सां लाॻापियल 2 दहशतगर्द मारिजी विया हथियार हथ। CTD तर्जुमान मूजिबि CTD ऐं वफ़ाक़ी हसास इदारे गाज़ी ॻोठ में कार्रवाई कई, जंहिं दौरान फायरिंग जे नतीजे में 2 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। सिंध जी मेडिकल कॉलेजिस ऐं यूनिवर्सिटीज़ में दाख़िला लाइ MDK टेस्ट सुभाणे थींदी तयारियूं मुकमल। शागिर्दनि लाइ जो विनाइल कार्ड जो शर्त ख़तमु, मार्कशीट आणणी पवंदी। STS मूजिबि शागिर्दनि जी सहूलियत लाइ टेस्ट में जो विनाइल कार्ड जो शर्त ख़तमु कयो। उमेदवार असुल मार्कशीट ज़रूरु खणी अचनि। सखर में ॾोहारनि सां मुक़ाबले दौरान शहीद थियल पुलिस अहलकार जी मड़ जी घोटकी भरिसां जनाज़ नमाज़ बाद तदफ़ीन। शहीद अकरम चाचड़ जो मड़ ॻोठु दड़ी चाचड़ में जनाज़ नमाज़ बाद सरकारी एज़ाज़ सां मिटी माउ हवाले कयो वियो। शहीद अहलकार वारे वाक़े जो केस बि दाख़िल कयो वियो। उबावड़ो भरिसां ॻोठ लांगो में मुबैना अपघात कंदड़ नौजवान नारी समीना दोंदूअ खे क़तल करण जो इंकिशाफ़। नारी जे क़तल में संदसि भाउ असलम दोंदू मुलविस निकितो। पुलिस जवाबदार खे गिरफ़्तार करे वरितो। पुलिस मूजिबि जवाबदार पंहिंजी भेण खे कारहं इल्ज़ाम हेठि क़तल कयो आहे। नवाबशाह में 3 महीना अॻु B सेक्शन थाणे जी पुलिस हथां मुबैना मुक़ाबले में मारिजी वियल नौजवान एजाज़ चांडियो जी वारसन जो एहतिजाज। वारसन मूजिबि नौजवान एजाज़ चांडियो खे कूड़े मुक़ाबले में बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे इंसाफ़ कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي دوه ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومان د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقله مازوري.
2: هر دن هر پهر زندگی کی لہر، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मोहब्बत का नशा भी ना बहुत अजीब होता है। इंसान इतना मदहोश हो जाता है कि

0: रहा, इंसान के दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिला
1: कोई। मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस हिसार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब

0: जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम।

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर कीचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। देखना,
0: मैं ना फिर रूह के सामने तमाशा बन गई। मामा
4: अच्छा।

0: हमेशा तुम्हारे लहजे की नफरत मेरी जान ले लेगी।
1: और आपकी बेवफाई मेरी जान ले चुकी है।
2: आज के बाद इस घर की तरफ नजर उठा के मत देखना। गेट लॉस्ट। एक बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाने का हुक्म देते तो हुक्म मान लेना चाहिए।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: GAFM 88
2: नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

जेपीजे शहर कुहाट में मस्जिद के आपघाती हमलों के अंदर दहशतगर्द अफगान शहरी निकतो बई आपघाती बमबारी सुणप न थी दहशतगर्द हमले सबब मुतासिर कुहाट वाले इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी मुकम्मल इलाके में इलाके के क्लियर किया

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।